आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में

सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वंदनवार से पहले चिंतन। आज का चिंतन है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन उसूल है हमेशा मुस्कुराती रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान कई परेशानियों की सबसे अच्छी दवा है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 6:30 का समय हुआ है। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 210 आप सुनेंगे। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिएगा श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का भाग 5 प्रसारित होगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। ये कार्यक्रम आप पुनः शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सात बजे सुनिएगा भूले बिसरे गीत। हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस। इसका भाग 31 आज प्रसारित होगा। सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात पुनः 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे हेलो फरमाइश। ग्यारह बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। 12:05 पर सजाई जाएगी यादों की महफिल। सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे। 2:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। 3 बजे सुनिएगा हेलो सहेली। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे आपको सुनवाई जाएगी गीतों भरी कहानी। कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का है। 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम तराने नए पुराने।

6:35 पर शाम को वक्त होता है कार्यक्रम संध्या रंजन का। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। सात बजकर 45 मिनट पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गजलों से सजा गुलदस्ता। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी जरा सी आंख लग गई। लेखन और निर्देशन गिरिंद्र प्रसाद का है।

आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर राजुल अशोक का है। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और रात्रि 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा में। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 210।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: रविंद्र जी, तबले के दौर की बात हो रही है तो तीन ताल की हमने पिछले कड़ियों में बात की। हाँ। तीन ताल के अलावा फिल्म संगीत में और कौन से ताल है जिनका उपयोग किया गया है?
2: जी, तीन ताल के अलावा शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन में जो ताल हम लोग संगत के लिए लेते हैं
1: जी,
2: उसमें भी एक है कि तीन ताल की जैसे खूबसूरती है तो वैसी ही खूबसूरती है रूपक ताल की। ये सात मात्रा का ताल है, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। तो ये रूपक ताल जो है इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं और ज़्यादातर गीत जो रूपक ताल में बने हैं वो सारे के सारे गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो जो है सात मात्रा का चक्र जो है
1: जी,
2: वो इतनी खूबसूरती से आता है कि वो बड़ा लुभावना बन जाता है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं रूपक ताल के
1: जी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक ही ताल है जिसकी शुरुआत खाली से होती है।
2: हाँ, खाली से होती है, ती पर खाली है, ती ती ना धी ना धी ना
1: जी।
2: तो वो खाली से शुरू होने वाला ये,
1: और ये निरालापन ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है।
2: बिल्कुल,
1: और इसी वजह से वो सारे गीत जिसमें निबद्ध होते हैं रूपक में,
2: हाँ हाँ,
1: तो बड़े सुनने को
2: बहुत ही प्रिय अच्छे
1: होते हैं। तो इस ताल में निबद्ध कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं?
2: आपकी नजरों ने समझा।
1: क्या बात है, अनपढ़ फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है लता जी के स्वर में, मदन मोहित साहब की संगीत रचना
2: जी।
1: आइए सुनते हैं।

0: रूपक ताल में निबद्ध ये गीत हम सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म से। रविंद्र जी, रूपक के बाद अब किस ताल की चर्चा करेंगे?
1: रूपक से ही बहुत करीबी रिश्ता रखता है। जैसे रूपक की 7 मात्रा है,
0: जी जी,
1: तो उसकी दुगनी 14 मात्रा, 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है। अभी ये जो है रूपक जो है वो ती ती ना धी ना धी ना ती, ये रूपक है। और दीपचंदी जो है वो धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा, तो ये जो है ये रूपक है के साथ में ही दीपचंदी है, जो दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है। तो दीपचंदी की भी कई सारी रचनाएं हुई है, और इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि रूपक का जो गीत है वो हम दीपचंदी में भी गा लें या दीपचंदी का जो गीत है वो हम रूपक में भी गा लें,
0: ऐसा नहीं होता।
1: ऐसा नहीं होता क्योंकि वो दोनों ताल की अपनी अपनी खूबसूरती है और अपना अपना उनका एक लहजा है, तो उसी लहजे में वो आता है। इसलिए दीपचंदी के गीतों का भी एक अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छा लगता है।
0: मिसाल के तौर पे कौन सा गाना
1: दीपचंदी में? अजीर उठकर अब कहाँ जाइए,
0: आरजू फिल्म की बात आप कर रहे हैं?
1: जी जी
0: जी जी जी, बहुत ही सुंदर गीत है जो राग देश पर आधारित है। और दीपचंदी में निबद्ध इस गीत को पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बात।

0: श्रोताओं, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म आरजू से, लता मंगेशकर का स्वर। ऐसा ही एक और गीत है रविंद्र जी,
1: जी
0: कश्मीर की कली फिल्म से।
1: हाँ।
0: ये भी ताल दीप चंदी में निबद्ध है।
1: हाँ।
0: इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: इशारों इशारों में दिल लेने वाले,
0: इसकी भी झलक सुनते

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये थी झलक कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत की, जो ताल दीप चंदी में निबद्ध है और राग पहाड़ी पर आधारित है। संगीतकार ओपी नैयर। रविंद्र जी, रूपक 7 मात्रा का ताल है और दीप चंदी 14 मात्रा का।
1: हाँ।
0: फिर इन दोनों तालों का एक साथ प्रयोग किसी गीत में कभी हुआ है?
1: बिल्कुल हुआ है, और वो जो गीत है वो मेरे ख्याल से सभी का बड़ा प्रिय गीत है, वो पिया तो से नैना लागे रे। बहुत ही खूबसूरत गाना है और कई सारी विशेषताएं इसमें है। एसडी बर्मन साहब का मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग हम कह सकते हैं। ये इसमें जो है ना वो है तालवाद्य कचेरी।
0: जी,
1: तालवाद्य कचेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तालवाद्य है और उन तालवाद्यों का सोलो परफॉर्मेंस। तो तालवाद्य कचेरी के तो अपने स्वतंत्र कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको ये फिल्म गीतों में लाना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है और जो एसडी बर्मन साहब ने किया है। तो पिया तो से नैना लागे में ये जो गीत है तो इसमें वो तालवाद्य कचेरी अंत में बजती है, लेकिन ये जो गाना है इसमें रूपक भी है और उसके साथ साथ दीपचंदी भी है। तो दीपचंदी और रूपक दोनों को सुनने का मज़ा इसमें है, इस गाने में। मतलब जो उसका वजन एक बार रूपक का है एक बार दीपचंदी का है, दोनों बहुत ही अच्छा लगते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है जो है कि तबले का उपयोग फिलर की तौर पर, मतलब इंटरलूड।
0: अच्छा।
1: जो गाने के बीच में जैसे वो शब्द आता है पिया तो से धगने धिन्न धनना नना, तो ये जो छोटा सा पीस है जिसको हम इंटरलूड कहते हैं, तो अक्सर वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं। ये इस गाने में वो तबले पे बजा है इंटरलूड और वो बहुत ही खूबसूरत है।

0: रूपक ताल और दीपचंदी ताल का साथ साथ प्रयोग जिस गीत में किया गया, गाइड फिल्म का वही गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज हमने आपको सुनवाई इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नरानिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है मुकेश ने। भरत व्यास के बोल हैं, सतीश भाटिया का संगीत। फिल्म का नाम बूंद जो बन गई मोती।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पतंगा से शमशाद बेगम का गाया गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, सी रामचंद्र का संगीत है।

अभी आपने शमशाद बेगम का गाया गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं तुलसीदास फिल्म से आशा भोसले और साथियों के स्वरों में जीएस नेपाली का लिखा गीत। धुन बनाई है चित्रगुप्त ने।

0: अभी आपने सुना आशा भोसले और साथियों के स्वरों में ये गीत, और आइए अब सुनते हैं ये संदेश, और संदेश के बाद लेते हैं एक अंतराल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, भूले बिसरे गीत में इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत। फिल्म का नाम है नास्तिक। प्रदीप ने इस गीत को लिखा है, सी रामचंद्र ने संगीत से सजाया है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मेला से। ये गीत शमशाद बेगम और मुकेश के युगल स्वर हैं। शकील बदायूनी का लिखा गीत, नौशाद अली का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शर्त से ये गीत, जिसे लिखा है SH बिहारी ने, गायक कलाकार और संगीतकार हेमंत कुमार।

अब आपको सुनवा रहे हैं मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत। रचना हसरत जयपुरी की है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे, और इसी गीत के साथ में कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहता सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम कौर का प्यार भरा प्रातःकालीन नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार के साथ। कोई किसी को सिखा नहीं सकता, जब खुद में इच्छा जगती है तभी कोई सीख पाता है। श्री अरविंदो।

और भाई एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। तो सबसे पहले जाने की आज है विश्व पर्यावरण दिवस। इतिहास के पन्ने पर आइए चलते हैं। तो आज ही के दिन सन 2005 में ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आज ही के दिन सन 2008 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का भारत सरकार को निर्देश दिया। और आज ही के दिन एलेन परेरा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक का कार्यभार संभाला। सन 2017 में आज ही के दिन सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark III D1 का सफल प्रक्षेपण हुआ।

में जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया। 1972 में आज ही के दिन जन्म हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। रमेश कृष्णन का जन्म 1961 में हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक एवं पूर्व टेनिस खिलाड़ी रहे। आज ही के दिन सन 1946 में जन्म लिया था प्रेम खंडू थंगुन ने, जो भारतीय राजनीतिज्ञ और अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और सन 1892 में आज ही के दिन जन्म हुआ था सिकंदर हयात खां का, जो स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक काल में पंजाब राज्य के प्रधानमंत्री थे।

और भाई ये उनके बारे में जानते हैं जो आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आज ही के दिन सन 1996 में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे कुबेर नाथ राय, जो ललित निबंध में विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते थे। आज ही के दिन सन 1942 में अलविदा कह गए मास्टर मदन, जो प्रतिभाशाली गज़ल और गीत गायक थे। तो भाई ये इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

और भाई, आज के स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में जाने धड़हर पंचायत में जीवनदायिनी है।

नाशा नदी। मैं कैमूर जिला अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड का धड़हर पंचायत हूँ। मेरी पहचान है कि मैं कर्मनाशा नदी के कछार पर बसा हूँ। मेरे पंचायत के आंगन में अधिकतर गांव का ताल्लुकात कर्मनाशा नदी से है। सिंचाई का साधन हो या मवेशियों के लिए पेयजल, कर्मनाशा नदी ही जीवनदायिनी है। एक और बात, पंचायत के सभी तो नहीं मगर अधिकतर गांव को कर्मनाशा नदी अलग करती है।

और हमारी अगली सुर्खी है, क्षमा करें, अगली गतिविधि है धोड़नडी नाइट क्रिकेट ट्रॉफी पर धनगाई टीम का कब्जा। सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के नौनहर पंचायत अंतर्गत ढोड़नडीह गांव में आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच में धनगाई 11 की टीम ने बजरंग क्रिकेट क्लब धनगाई को 26 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया। खेल की समाप्ति पर कमेटी ने विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ ही 10,151 रुपये तथा उपविजेता टीम को 5,100 का नगद राशि भी भेंट किया। और हमारी अगली गतिविधि में महिला और बाल विकास निगम ने सखी वार्ता का किया आयोजन। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम रोहतास द्वारा गुरुवार को आलमपुर पंचायत भवन में विशेष बैठक सह जागरूकता कार्यक्रम सखी वार्ता का आयोजन किया गया। इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों की समस्याओं का समाधान करना, विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक करना है।

और हमारी अगली सामाजिक स्थानीय एवं सांस्कृतिक गतिविधि में पीएम विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन में जिला स्तरीय जिला राज्य स्तर पर कर रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसाय आयोग के सदस्य सरदार कमलजीत सिंह ने रोहतास जिले में उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जिले में चल रही उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार सरकार उद्योग एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। और उसके साथ अगली हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों में अल्ट्रासाउंड लाइसेंस नवीनीकरण में देरी। जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों में लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर संचालकों की चिंता बढ़ने लगी है। जिले में 57 पुराने अल्ट्रासाउंड सेंटरों का लाइसेंस नवीनीकरण होना है। 17 नए अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस के लिए आवेदन लंबित है। और अगली सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि में अस्पतालों व होटलों में फायर सेफ्टी की जांच, सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर दी चेतावनी। बढ़ती गर्मी और देश के विभिन्न हिस्सों में से आ रही अगलगी की घटनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सासाराम शहर और आसपास के इलाकों में अगलगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा सुरक्षा मानकों को पुख्ता करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सासाराम SDM डॉक्टर नेहा कुमारी और फायर ब्रिगेड की अधिकारी सुनीता कुमारी ने संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की।

और हमारी अगली स्थानीय गतिविधि में पशुपालन फल फूल उत्पादन की बड़ी संभावना। कैमूर जिले के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक खेती के अलावे पशुपालन फल फूल उत्पादन की भी बड़ी संभावना है। इसके लिए अनुकूल वातावरण भी है। अब नए तरीके से किसान खेती करने के लिए उत्सुक भी हैं। वे नए प्रयोगों से कृषि के से बेहतर उत्पादन ले सकेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा के कृषि वैज्ञानिक अमित कुमार सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि कैमूर जिला कृषि प्रधान जिला है, लिहाजा यहाँ खरीफ और रबी फसल के अलावे तेलहनी और दलहनी फसलों की खेती किसान बंधु बड़े पैमाने पर करते हैं। और अब आइए स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि के बाद सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और हमारी अगली स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि में विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता अभियान आज स्कूलों, शिक्षण संस्थानों व कार्यालयों में होंगे कार्यक्रम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिले में व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रोहतास जिला के पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन को लेकर विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों तथा विभिन्न सामाजिक संस्थानों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता रैली, पौधारोपण अभियान, कार्यशाला, संगोष्ठी तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

और अब आइए आज की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। श्रोताओं, लगभग सभी समाचार पत्र हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। आइए लेते हैं कार्यक्रम की पहली सुर्खी। पहली सुर्खी को लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपनी जगह दी है, और जिसमें प्रभात खबर लिखता है, सड़कों व पुलों की मजबूती में की होगी जांच, घटिया काम पर सख्ती सीएम। वहीं दैनिक जागरण लिखता है, सड़कों व पुलों के निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव में कोताही बर्दाश्त नहीं सीएम। हिंदुस्तान की हेडलाइन है, सड़कों पुलों के रखरखाव में कोताही बर्दाश्त नहीं सीएम। समाचार विस्तार से, सभी पुलों का विशेषज्ञों ने नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डोटुक कहा कि सड़कों और पुलों के निर्माण की गुणवत्ता तथा उनके रखरखाव में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता को सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण सड़क संपर्क उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। अगली सुर्खी को दैनिक जागरण ने अपनी हेडलाइन बनाई है। सुर्खी है, दिग्गज स्वर्ण रिफाइनरी कंपनी में 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। वहीं दैनिक भास्कर लिखता है, गोल्ड किंग पर सेबी का शिकंजा, 15 लाख करोड़ की कमाई झूठी। पश्चिम एशिया के संघर्ष और वैश्विक अस्थिरता के असर से जूझते भारतीय शेयर बाजार में एक नया कॉरपोरेट घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। गोल्ड रिफाइन करने वाली और जेवरात व्यवसाय में लंबे समय से दिग्गज माने जाने वाली बेंगलुरु की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड अब शेयर बाजार नियामक एजेंसी सेबी के निशाने पर है। सेबी ने 3 जून 2026 को जारी 109 पन्नों की अंतरिम आदेश में कंपनी और उसके प्रवर्तक व प्रबंध निदेशक राजेश मेहता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सेबी ने आईआरईएल के 4 विगत वर्षों अप्रैल 2000 से मार्च 2024 के बही खातों की जांच के बाद आरोप लगाया है कि इस अंतराल में कुल 15.15 लाख करोड़ रुपए की आय को

अगली सुर्खी प्रभात खबर से, पटना में 10 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर पकड़ाया। 18.66 लाख कैश और हथियार के साथ एक गिरफ्तार। गोपालपुर थाने के बेईमान टोला में पुलिस ने छापेमारी की और संतोष साव के मकान से करीब 10 करोड़ रुपए के 6 किलो 630 ग्राम ब्राउन शुगर, 18.66 लाख कैश और हथियार बरामद कर लिया। हालांकि संतोष साव मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके साले कृष्णा कुमार राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कृष्णा मूल रूप से गोपालपुर थाने के भेलवाड़ा का रहने वाला है।

और हमारी अगली सुर्खी हिंदुस्तान से, केस निपटारे को समय सीमा से जुड़ी याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में मामले के समय सीमा में निपटाने को दिशा निर्देश बनाने और उन्हें लागू करने का आदेश देने की मांग की गई थी। याचिका में देश की सभी अदालतों में सुनवाई टालने को नियंत्रित करने को एक समान दिशा निर्देश तय करने की भी मांग की थी। कोर्ट ने याचिका पर विचार करने के से इनकार करते हुए खारिज कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता से मांग को लेकर भारतीय विविध राज्य विधिज्ञ परिषद, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला अदालत बार एसोसिएशन के पास जाने को कहा है।

और अगली सुर्खी भी हिंदुस्तान से, केरलम में मानसून की देर से दस्तक, बिहार 16 तक आएगा। अल नीनो के चलते कम बारिश की आशंकाओं के बीच मानसून ने गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने केरल कर्नाटक में अगले 7 दिनों के भीतर मानसून की भारी बारिश की संभावना जताई है। केरल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून थी, इस बार 3 दिन के विलंब के साथ मानसून का आगमन हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल के साथ साथ मानसून ने कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों को भी पहले ही दिन कवर कर लिया है।

और हमारी अगली सुर्खी दैनिक जागरण से है, सरकारी नौकरी सिर्फ निर्धारित योग्यता वाले को ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी सिर्फ निर्धारित योग्यता के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को ही मिलनी चाहिए। अधिक योग्यता वाले व्यक्ति को कम योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित नौकरी देना असल में पात्र और हकदार अभ्यर्थी को उसके अवसर से वंचित करना है। जस्टिस असहानुद्दीन और जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश रद्द करते हुए ये बात कही, जिसमें एक अस्थाई बैंक सहायक को बहाल करने का आदेश दिया गया था। और इसी के साथ नमस्ते रोहतास यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते रोहतास, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। अब से थोड़ी देर में हम सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व

0: के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें।

0: पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है। किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है। सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन। पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं? पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है। प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।
3: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
4: क्या कहती हो शामू की माँ?
3: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
4: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है पत्राधारित कार्यक्रम पसंद आपकी।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम पसंद आपकी में, और आपके ढेर सारे पत्र हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद का गीत तो हमें पत्र ज़रूर भेजिए। उसके लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कार्यक्रम पसंद आपकी, आकाशवाणी सासाराम बिहार, पिन नंबर है 821115। तो हमें पत्र लिखकर आप भी बताएं कि आपको कौन सा गीत सुनना है। तो चलिए अब हम लेते हैं कार्यक्रम का पहला पत्र, क्योंकि आपके ढेर सारे पत्र आए हुए हैं। तो ये पत्र है ब्रह्मपुरा मनिगाछी से। श्रोतागण है भाई अक्षयलाल राय, पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार, प्रिंस कुमार, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से है, अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना परवीन, अरहान बाबू, हमज़ा बाबू, तैमूर बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, मुजम्मिल बाबू, और आई ज़िला मुजफ्फरपुर से है, कोकिलवारा से है हमारे श्रोतागण मोहम्मद फैसल शेख, नूजहत जहां नाज, कुकेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता है कांति निकेतन राजनगर से। और हमारे अगले श्रोता हैं कलेर बिहार से

श्रोतागण हैं मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत, प्रवीण सदफ आरजू, साहिल अरमान, मस्कूर आलम, शमा परवीन, सादिया परवीन और अलीशा। और ये सुनना चाहते हैं फिल्म फागुन का गीत। तो आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और ये पत्र आया है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से। श्रोतागण है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ये सुनना चाहते हैं फिल्म प्रेम कहानी से गीत। अगला पत्र है सरगुजा मैनपाट से। श्रोतागण है सोनिया थापा, सोमन थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से है परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, बबलू कुमारी बबलू डोम। जेल रोड मथुरा से है वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। और ये पत्र आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय।

दुबिहा नेवादा गाजीपुर से है प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय है शेरपुर कला गाजीपुर से। तो आइए सुनते हैं उनके पसंद का ये गीत।

ये पत्र आया है भाई फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित का, फुटानी चौक, नरहन स्ट्रीट से, ताजपुर मोरवा से, भाई कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण

और भाई लेते हैं कार्यक्रम का अगला पत्र, जिसे भेजा है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से। श्रोतागण है राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी।

कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली फलना झा, और पप्पू जी रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला है नया नगर सुपौल से, इनके साथ ही है श्वेता रंजन। और हमारा अगला पत्र है दतरंगी से, है भागवत वर्मा, लेवई से है गुलाब दास मानिकपुरी, और विश्वनाथ साहू हैं लक्ष्मणपुर से, और ये सुनना चाहते हैं संघर्ष फिल्म का ये गीत। तो आइए सुनते हैं इनके फिल्म का ये गीत।

0: समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर।

संघर्ष फिल्म के इसी गीत के साथ पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। मुख्य समारोह पटना स्थित लोक भवन में होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को उनके सम्मान में पटना हाईकोर्ट में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है।

0: गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 8 जून तक आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी भवनों के सौर ऊर्जाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने तथा 1 करोड़ छतों तक सौर ऊर्जा के विस्तार के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य की ओर से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और ब्रेडा के निदेशक राहुल कुमार ने यह सम्मान प्राप्त किया। राज्य सरकार ने इसे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इधर महिलाओं की सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पिंक बस सेवा के लिए बिहार का चयन प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया है। ये पुरस्कार आगामी 20 जून को नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट के दौरान प्रदान किया जाएगा। पिंक बस सेवा को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस उपलब्धि से राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। कृषि विभाग ने खरीफ मौसम से पहले उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत राज्य में 29 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 208 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और निर्धारित मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
2: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई द्वारा उपलब्ध कराए गए विश्लेषण या एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता है। मसौदे पर लोगों से इस माह की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रचार

0: उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय छात्र लैपटॉप योजना 2026 के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने बताया है कि ये दावा फर्जी है। कार्यालय ने कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना या विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस वर्ष 5 जून को 1973 से मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
5: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: इधर राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 1 लाख पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी आमजनों से अधिक पौधारोपण कर धरती पर हरियाली बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी वाहनों के उपयोग करने को कहा है। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
6: दिनांक 5 जून राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर व्यक्तिगत और सेवा संबंधी सूचनाओं का सत्यापन तथा संशोधन शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि आज के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने

0: पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड के मैनपुरंदा पंचायत में राजस्व कर्मचारी राणा रणविजय गोपाल को 45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान राजस्व कर्मचारी के सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर्मचारी पर अवैध अतिक्रमण को हटाने संबंधी रिपोर्ट देने के बदले राशि ले रहा था। रोहतास जिले के विभिन्न स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 142 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे ने संबंधित नियोजन इकाइयों से इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। ये सभी शिक्षक पिछले 10 साल से वेतन ले रहे थे। अररिया जिले में निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलने वाले बस संचालकों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस संचालकों को यात्रियों से केवल निर्धारित किराया ही लेने का निर्देश दिया। भोजपुर पुलिस मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में 1.5 किलो से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत खजूरी पंचायत के बलुआही टोला में एक पोखर में नहाने के दौरान डूबने से 3 किशोरियों की मौत हो गई। अरवल जिला प्रशासन की ओर से बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री और समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े विषयों पर समीक्षा की गई। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण साई पटना की ओर से विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 7 जून को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली सुबह 6 बजे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होकर पटना जू तक जाएगी। इस आयोजन में राज्य के विभिन्न खेल संघों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ साथ सशस्त्र बलों के जवान भी भाग लेंगे। रैली का उद्देश्य लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सड़कों पुलों के रखरखाव में कोताही बर्दाश्त नहीं। दैनिक जागरण लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार नौकरी सिर्फ निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही। दैनिक भास्कर ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार में मौसम के 2 रंग, दक्षिण में लू, उत्तर में वज्रपात का अलर्ट, मॉनसून ने केरल में दस्तक दी। प्रभात खबर ने मुजफ्फरपुर अस्पताल में अग्निकांड की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, आईसीयू बन गया शमशान, 6 मरीज जिंदा चले। और अब अंत में मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1 लाख पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के

0: सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आज के कार्यक्रम विवरणी पर एक नजर डालते हैं।

अब से थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम को। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 10 आप सुनेंगे। इसके साथ ही 10:05 पर खेल कार्यक्रम के तहत खेल खिलाड़ी में आज आप जानेंगे फुटबॉल के बारे में। और भेंट वार्ता है दामोदर सिंह, जो पूर्व सैनिक एवं फुटबॉल कोच है।

लोक माधुरी भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सुबह के 10:30 पर। 10:45 पर हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रस धार। इसके साथ ही 11 बजे हम चलेंगे पुनः विविध भारती के कार्यक्रम की ओर और सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम को।

संध्या 5:10 पर भक्ति संगीत के तहत वंदन कार्यक्रम आप सुनेंगे। 5:30 पर महिला बहनों का कार्यक्रम होगा घर आंगन। इसके साथ ही ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे संध्या के 6:10 पर।

सांझ गीत संध्या के 6:40 पर आप सुनेंगे। ये कार्यक्रम भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित है। 7:15 पर होगा गुड इवनिंग रोहतास, जिसमें हम सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम को। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार, जिले की हलचल हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से संध्या के 7:25 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम होगा ई मनपसंद 7:50 से, और रात्रि के 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे।

लोकधारा भोजपुरी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा रात्रि के 9 बजे। आज कार्यक्रम बंदगी में हम्द एवं नात आप सुनेंगे रात्रि के 9:15 से। 9:30 पर होगा रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प कला का प्रसारण। हिंदी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रस रंग आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे। इसके साथ चित्रपट तराने 10:30 पर। हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि के 11 बजे। और सभा का समापन रात्रि के 11:10 पर होगा।

श्रोताओं, ये था आज के कार्यक्रम विवरणी की एक झलक। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मलिका।

अभी आप सुन रहे थे डंकी फिल्म का ये प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह के स्वर में। इरशाद कामिल ने इस गीत को शब्द दिया था, धुन बनाया था प्रीतम ने। और अब आइए गीत मालिका कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म यारिया से। स्वर सचेत टंडन के, शब्द मनन भारद्वाज मीराबाई के और धुन मनन भारद्वाज नुसरत फतेह अली खां के।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा। 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी

0: Lakhan. My name is Lakhan. My name is Lakhan. Sajnon ka sajan. Mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

0: जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।
1: आए तुझे भी नानी माता को माटी माता, मैं बोलूं जो बोलूं तो फिर चालू होगा हंगामा। मदर्स डे हो जाएगा।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड, आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायू जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि देश की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग भी है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है खेल कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रजनीश श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम सबसे पहले सुनेंगे सप्ताह भर की खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरें। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे फुटबॉल के कोच दामोदर सिंह के पास और उनसे जानेंगे फुटबॉल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सप्ताह भर की खेल गतिविधियों से जुड़ी सुर्खियों से। दिव्यांशी ने दोहरी स्वर्णिम सफलता से इतिहास रचा। टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल को मंजूरी। विराट ने कहा कि हम युवाओं की प्रेरणा से सफल हुए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया। फुटबॉल फीवर चढ़ने वाला है, अब दन दनादन गोल का रोमांच देखेंगे। फीफा विश्व कप 2026 कुछ ही दिन शेष। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। BCCI ने वैभव को सर्वोच्च स्तर तक लाने के संकेत दिए। विराट ने कहा कि IPL में लगातार दूसरी खिताब जीतना एक चुनौती थी और हमने ये युवाओं से सीखा। Under-18 एशिया कप में पुरुष टीम की बड़ी जीत। भारतीय Under-18 हॉकी टीम ने सोमवार को एशिया कप 2026 में अपने तीसरे पुल ए मैच में कोरिया पर 4-1 से शानदार जीत दर्ज की। भारत के लिए कप्तान केतन कुशवाहा ने तीसरे, 36वें, वरिंदर सिंह ने 5वें और शाहरुख अली ने 54वें मिनट में गोल किए, जबकि कोरियाई कप्तान यूएन जेहवाक ने 21वें मिनट में अपनी टीम का एकमात्र गोल किया। इस जीत से भारत पूल में शीर्ष पर पहुंच गया है। हालांकि कोरिया और जापान के साथ भी 6 अंक है, पर गोल अंतर में भारत शीर्ष पर है। भारत का अगला मुकाबला 3 जून को आखिरी पूल मैच में चीनी ताइपे से होगा। एथलीट्स में भारत ने 19 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण शामिल हैं। नार्वे शतरंज में चारों भारतीयों को शिकस्त। नार्वे शतरंज टूर्नामेंट के 6ठे दौर में चारों भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। सभी को हार का सामना करना पड़ा। पिछले दौर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्व चैंपियन डी गुकेश विजय अभियान जारी नहीं रख पाए, जबकि आर प्रज्ञानंदा, दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों को जहां निराशा हाथ लगी, वहीं मौजूदा चैंपियन और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने क्लासिकल में जीत दर्ज करके खुद को खिताबी दौड़ में फिर शामिल कर लिया। उन्होंने अलीवेजा फिरोजा को मात दी। टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल को मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के बोर्ड ने खराब रोशनी के कारण खेल प्रभावित होने की स्थिति में टेस्ट मैचों में परीक्षण के आधार पर गुलाबी गेंद के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। साथ ही ड्रिंक्स ब्रेक्स के दौरान मुख्य कोच को मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से चर्चा करने की अनुमति देने जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव भी वार्षिक बैठक में कर लिए। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 11 जून से होगी और फाइनल 19 जून को होगा। फीफा विश्व कप में आखिरी बार जलवा बिखेरेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार जूनियर, मोहम्मद सलाह, लुका मॉड्रिस, ये इस बार अपना अंतिम मैच खेलेंगे। फीफा विश्व कप 2026 कई महान फुटबॉलर के लिए विदाई का मंच बन सकता है। अपने शानदार करियर को यादगार अंत देने की उम्मीद के साथ ये सितारे एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर उतरेंगे। केरल के किशोर तहसीन इतिहास बनाने को तैयार। केरल के फुटबॉल प्रेमियों का दशकों पुराना सपना अब हकीकत की दहलीज पर खड़ा है। कतर के 19 वर्षीय विंगर तहसीन मोहम्मद जमशीद यदि 2026 फीफा विश्व कप मैदान में उतरते हैं तो वह केरल मूल के पहले फुटबॉलर बन जाएंगे जो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर खेलेंगे। भारत में फीफा वर्ल्ड कप लगभग रात 12:30 बजे और रात 1:30 बजे से प्रसारित किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि पुरस्कार राशि कितनी है। कुल $65.5 करोड़, करीब 5000

0: 600 करोड़ की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि बांटी जाएगी, जो पिछले संस्करण से 50% ज्यादा है। चैंपियन को $5 करोड़, करीब 430 करोड़, उपविजेता को $3.3 करोड़ यानी 284 करोड़, तीसरा स्थान लेने वाले को $2.9 करोड़ करीब 249 करोड़, चौथा स्थान $2.7 करोड़, पांचवा स्थान $1.9 करोड़, प्री क्वार्टर फाइनल 9 से 16 $1.5 करोड़। हर टीम को तैयारी खर्च के लिए $15 लाख करीब 13 करोड़ अलग से, यानी विश्व कप में पहुंचने वाली प्रत्येक टीम को कम से कम $1.5 करोड़ करीब 90 करोड़ रुपये मिलने की गारंटी होगी। तो दोस्तों, यदि सप्ताह भर की खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरें, आइए दोस्तों आज के इस अंक में हम बातें करेंगे फुटबॉल पर, और इसके लिए हम चलेंगे हमारे सीनियर गार्जियन दामोदर सिंह के पास, और उनसे हम जानेंगे फुटबॉल के बारे में, और उनसे यह भी जानेंगे कि वो फुटबॉल से कैसे जुड़े। दामोदर जी, आकाशवाणी सासाराम आपका हार्दिक स्वागत करता है।
1: नमस्कार एवं आपको और आपके आकाशवाणी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ आपसे कि आप फुटबॉल से कैसे जुड़े, कब से खेलते हैं, और कैसे आपने इतने सारे गेमों में फुटबॉल को ही चुना?
1: मैं बचपन से फुटबॉल खेल रहा था, और क्लासिकल फुटबॉल मैं खेलना शुरू किया तब जब मैं बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर में भर्ती हो गए, तो वहाँ पर हमारा सेंटर टीम में सिलेक्शन हो गया, और क्लासिकल और या ऊपर लेवल का जो फुटबॉल कहिए वहाँ हमको सीखने के लिए मिला और खेलने के लिए मिला। जो हमारे कोच थे वो बहुत ही पहुँचे हुए कोच थे, उनका नाम था सोंगाराम सामत, वो नेशनल खेल चुके थे और बहुत ही अच्छे और तजुर्बेकार थे, उनके द्वारा ही मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला।
0: दामोदर जी, ये हमारे लिए हमारे श्रोताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम एक सेना के जवान से बातें कर रहे हैं जिन्होंने सेना में काम किया और इसके साथ साथ फुटबॉल भी खेला। कैसा उस समय आप महसूस करते थे, दोनों चीज़ों को कैसे निभाते थे आप?
1: आर्मी में गेम खेलना और अपनी ड्यूटी को भी निभाना थोड़ा कठिन अवश्य है
0: जी, जी,
1: लेकिन उसको निभाना प्लेयर के लिए बहुत फैसिलिटी भी रहता है, तो वो दोनों को सामंजस्य करके चलना होता है, आर्मी का ड्यूटी और खेल दोनों को चलता है। हमारे ऑफिसर साहबान जो सीओ साहब होते हैं उनके तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलता है, जो प्लेयर्स या जो आर्मी के जवान अच्छा खेलते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रमोशन
0: अच्छा
1: भी होता है, उसमें भी मेरा एक प्रमोशन हुआ है और मैं प्रसन्नतापूर्वक उसको लिया और अपने सीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
0: तो आप लोगों ने सुना, अगर आप हैं नौकरी में भी, सेना में भी, किसी में भी, तो आपका गेम छूटेगा नहीं बल्कि वो आपको प्रमोशन तक ले जाएगा। दामोदर जी, आप सेना में कब ज्वाइन किए थे और कब रिटायर किए?
1: मैं सेना में ज्वाइन किया था 18 दिसंबर 1975 को,
0: अच्छा,
1: और 31 दिसंबर 2003 को मैं
0: रिटायर
1: हो गए बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर से, और तब से मैं सासाराम में हूँ
0: और फुटबॉल की सेवा करता हूँ।
1: यहाँ मैं फुटबॉल का सेवा कर रहा हूँ, बच्चों को चाहता हूँ कि एक अच्छा क्लासिकल फुटबॉल से मुलाकात हो इनको, और ये क्लासिकल फुटबॉल सीखें, कलात्मक फुटबॉल सीखें, मैं ये कहना चाहता हूँ।
0: दामोदर जी, मैं अक्सर देखता हूँ आपको फजलगंज न्यू स्टेडियम में, कभी आप पेड़ की पत्तियाँ तोड़ते हैं, कभी डालियाँ तोड़ते हैं, कभी साफ़ सफाई करते हैं, और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को उसमें मशरूफ़ रखते हैं।
1: मैं और हमारा एक क्लब है वो साथ में है, तो वो हमारे बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, सारे स्टूडेंट हैं, किसी न किसी स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एटमोसफेयर हो, अच्छा ग्राउंड हो, उसके लिए हम लोग ग्राउंड का मेंटेनेंस करते हैं, अच्छा लगने के लिए, अच्छा अपने आप को फील करने के लिए, अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा ग्राउंड बनाते हैं, तो हमेशा हम लोगों ने ग्राउंड के लिए काम किया है, और ग्राउंड को बहुत बच्चों के साथ मिल करके हमने उसका मेंटेनेंस करके बहुत अच्छा बनाया है, नहीं तो ऐसा नहीं रह पाता।
0: बिल्कुल सही, और इस उम्र में भी आप इस चीज़ को मेंटेन किए, इतनी मेहनत करते हैं, ये तो सैल्यूट वाली बात है।
1: ऐसा है, एक बार जो आदत लग गया है उसको

0: छूटता नहीं है, निभा रहा हूँ मैं। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चों को जो न्यू टेक्निक है उसको इन लोग को मिलता रहे। मेन आता है टेक्निक और क्लासिकल फुटबॉल हम इनको सिखाना चाहते हैं, इसलिए मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ और प्रतिदिन कुछ न कुछ नया इनके बारे में सोचते रहते हैं।
1: दामोदर जी, अब जरा हमारे श्रोताओं को, चूँकि इसमें जो श्रोता होते हैं ना हर उम्र के होते हैं और ख़ास करके वो ज़्यादा होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं या खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो फुटबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई, फुटबॉल के कितने प्लेयर्स होते हैं और क्या क्या नियम हैं, आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बहुत गूढ़ प्रश्न है आपका और बहुत व्यापक इसका जवाब भी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ग्राउंड को तीन भाग में बनाते हैं, जैसे साधारण, मीडियम और बड़ा, इस तरह से। तो जो हमारे यहाँ चलता है लगभग वो 105 और 80 का चलता है। इसका एक फार्मूला भी है, 3/2 है ना। तो अगर लंबाई 3 है तो उसका चौड़ाई 2 होना चाहिए, इस प्रकार से आप ग्राउंड बना। लेकिन 3 है, 105 लंबाई, 110 और हार्डली 120 तक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 3 ही ग्राउंड है, इतना काफ़ी है। इसमें 11 प्लेयर खेलते हैं, सब्स्टिट्यूट में 7 प्लेयर रहते हैं सब्स्टिट्यूट, तो 7 और 11 मिलकर के 18 प्लेयर्स रहना चाहिए कोच मैनेजर जी। इस प्रकार से एक टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं, बाकी प्रैक्टिस करना और वो करने के लिए टीम का अलग से व्यवस्था है।
1: फुटबॉल दुनिया का सबसे रोचक, अब तक जितने बार मैंने फुटबॉल देखा, टीवी पे देखा या ऐसे भी देखा, और विदेशों में तो इसके जो क्रेज़ है उसका तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, और सबसे अमीर प्लेयर भी लगभग माने जाते हैं फुटबॉल से, और यहाँ तक कि कभी कभी होता है कि हिंसक झड़प भी हो जाती है।
0: हमारे देश में या कहीं भी किसी भी देश में कोई भी गेम दर्शक के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो उनका लगन है देखने का, जो इंटरेस्ट है उनको फुटबॉल को देखना, फुटबॉल खेलना, वो हमारे यहाँ नहीं है। और इसी कारण हमारे दिन पर दिन हमारा फुटबॉल का स्तर हमारे देश में घटते जा रहा है। लेकिन जो फॉरेन में आप देख रहे हैं, ख़ास तौर से यूरोपियन कंट्री में, तो वो लोग एक क्लासिकल और बहुत ही न्यू टेक्निक में फुटबॉल खेलता है, वहाँ के दर्शक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और दर्शक बहुत ज़्यादा माने ऑडियंस आते हैं और वो देखते हैं, इसके चलते बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। उनका जो कोच है वो भी बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ और है, मैं अपने देश के लिए अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा, हमें भी अगर क्लासिकल फुटबॉल खेलना है और ऊपर जाना है तो हमें 5 बरस के बच्चों से ट्रेनिंग देना शुरू करना पड़ेगा, तब होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्या एक ISL इन लोगों ने स्टार्ट किया है हमारे देश के लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ISL के ऊपर क्लास के लोगों के लिए है, लेकिन बेसिक जो नीचे लेवल से बच्चे तैयार होकर के नहीं जा रहे, जो तैयार होकर के गए हैं वो ISL खेल रहे हैं, लेकिन नीचे ले कहाँ से तैयार होंगे प्लेयर, ये नहीं है। बताना चाहूँगा, हमारे राज्य में बिहार में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुला है राजगीर में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी ऊपर लेवल के खिलाड़ियों पर काम करेंगे, जो बच्चे न्यू रेज करने वाले हैं, न्यू उठने वाले हैं प्लेयर, जो 4 साल 5 साल, उनके लिए उनके पास कोई साधन नहीं है।
1: यानी अगर मैं ये साफ सुथरे लहजे में कहूँ तो वहाँ कोच पैदा हो सकते हैं, प्लेयर पैदा होने में दिक्कत है।
0: यह भी है, कोच भी, हाँ कोच पैदा तो कर रहे हैं ये लोग, लेकिन कोच सही काम नहीं कर पा रहे हैं। जो सिखा हुआ प्लेयर है उसको तो मान लीजिए सिखा रहे, लेकिन एक नया जो बच्चा तैयार हो रहा है, दूसरे देशों में ऐसा हो रहा है, हमारे पास भी एक लड़का आया था जो कैलिफोर्निया में रह रहा था,
1: अच्छा,
0: वहाँ पर अच्छा ट्रेनिंग लेकर के आया था, उसका एज 8 साल था, हमारे यहाँ बड़े बच्चों के साथ वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहाँ वो बताया स्कूल में हमको ट्रेनिंग मिलता है, एक अच्छे कोच जो वर्ल्ड लेवल का कोच है वो मुझे क्लास में स्कूल में सिखाता है, इसके बाद अलग से मैं फिर एक और भी बढ़िया वाला कोच के पास जाता हूँ जहाँ क्लब में हमको ट्रेनिंग मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों को जो 8 साल से नीचे, 5 साल से बच्चों को जब तक यहाँ ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक हमारा विकास होना संभव नहीं है।
1: बिल्कुल सही दामोदर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दामोदर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, बातें तो होती रहेंगी। कुछ गाना सुनना पसंद करते हैं आप?
0: स्वभाव के अनुसार मैं बचपन से ही मुकेश जी का संगीत सुनते आ रहा हूँ, अभी भी कभी कभी।

0: गुनगुनाता हूँ। उपकार फिल्म में का गाना है, मुकेश जी शायद गाए हैं या मन्ना डे गाए हैं, हम कह नहीं सकते। कश्म वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का गा, ये गाना मुझे बचपन से बहुत पसंद।
1: बहुत अच्छा गाना आपने पसंद किया। लीजिए दामोदर जी, मैं आपको भी आपकी पसंद का ये गाना सुनाता हूँ और अपने श्रोताओं को भी आपकी पसंद का ये गाना सुनाता हूँ।

0: दामोदर जी, मैंने आपकी पसंद का गाना आपको भी सुना दिया और आपके श्रोताओं को भी सुना दिया। अब हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हम जानना चाहते हैं कि फुटबॉल के जो नियम होते हैं, कभी अक्सर देखते हैं कोई ना कोई कार्ड दिखाया जाता है, वो क्या नियम है और इस गेम का समय क्या निर्धारित होता है?
1: समय साधारणतः जो है 90 मिनट का, डेढ़ घंटा का है और 15 मिनट ब्रेक है, जिसे हाफ टाइम हम लोग बोलते हैं। इसी के अनुसार कोई भी गेम हो, जिसमें नियम बहुत है उसको जानना पड़ेगा, लेकिन जो रेफरी होते हैं उनके संचालन में गेम स्टार्ट और समाप्त होना चाहिए। रेफरी लोग के पास दो कार्ड होते हैं, तीन रेफरी होते हैं, तीन रेफरी समान अधिकार और पावर है वो लोग का, और उनके मार्गदर्शन में गेम संचालित होता है। कार्ड दो होते हैं, एक येलो कार्ड होता है और एक रेड कार्ड होता है, जो रेफरी साहब के पास होता है। अगर रेफरी साहब रेड कार्ड दिखाए किसी प्लेयर को, तो उसी समय वो ग्राउंड से बाहर हो जाएगा और अगला

0: अगला बाकी वाला दो मैच भी वो नहीं खेल सकते। येलो कार्ड देखे एक वार्निंग कार्ड है और एक बार दिखाया तो चलेगा, लेकिन अगर किसी एक प्लेयर को एक मैच के अंदर दो बार येलो कार्ड दिखाया गया तो वह प्लेयर भी आउट हो जाएगा और उसको रेड कार्ड का वैल्यू होता है, और उसको दो येलो कार्ड का मतलब कि फिर उसको रेड कार्ड दिखाया जाएगा और रेड कार्ड का जो नियम का है वो उसके ऊपर लागू होगा और वो भी ग्राउंड से बाहर हो जाएगा, अगला दो मैच नहीं खेलेगा।
1: बहुत कड़ा नियम है, बहुत अच्छा नियम है। अच्छा, ये जो नियम है फुटबॉल की नेशनल और इंटरनेशनल, ये कौन सी संस्था बनाती है, कैसे काम करती है?
0: ये सर फुटबॉल फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड, फीफा बोलते हैं उसको, पूरा डिटेल आपको बताएं, फीफा, और वही रूल बनाते हैं, वही लागू करते हैं, और फीफा वर्ल्ड कप अभी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, तो वहीं से कोई नया अगर रूल पास होता है तो वही सबसे पहले लागू होता है फीफा वर्ल्ड कप में, और वो उसके बाद धीरे धीरे हमारे तक पहुंचता है, टाइम लगता है, लेकिन रूल नियम वहीं पास होता है। फुटबॉल के विकास के लिए, फुटबॉल के उन्नति के लिए, प्लेयरों का विकास के लिए, प्लेयरों का हर तरह की सुविधा के लिए कोई भी नियम वहां से पास किया जाता है, सबका ध्यान रखते हुए।
1: भारत में कौन सी संस्था काम करती है जिसके तहत टीम का चुनाव होता है, प्लेयर्स का चुनाव होता है?
0: इसको बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बोलते हैं, जो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर AFI बोलते हैं, उनका सेक्रेटरी और अध्यक्ष है, वही संचालन करते हैं। अच्छा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक हमारे सांसद से एक बिल पास हुआ है जिसका नाम स्पोर्ट्स बिल रखा गया है, इसमें बहुत सारे चेंज आ रहे हैं और अभी इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, संघ ने भी आदेश दे दिया है, लास्ट 30 जून तक इसको पूरे भारत में लागू करना है। वही AFI है, वही सबको संचालित करता है पूरे भारत के सारे राज्यों को, और जिले नियम कानून मानना मनवाना उसकी जिम्मेवारी है, और एक नियम के अनुसार इसका पालन किया जाता है और टूर्नामेंट वहीं से कराया जाता है, कोई भी प्रतियोगिता उसका देखभाल दिल्ली से होता है, हमारे जो फुटबॉल फेडरेशन है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय हमें दिया।
0: धन्यवाद आपको भी, आपने मुझे इतना महत्व दिया और यह सुनने का सुनाने का अवसर दिया हमको, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी और आपके आकाशवाणी को भी।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारे यह कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आपको हमारे यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। संकलन एवं सर रजनीश श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी। लोक माधुरी में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत बदरी बहार के स्वर में। इस गीत को शब्द और धुन दिया है अशोक शिवपुरी ने।

शारदा सिन्हा के स्वर में। अभी हम सभी परदेसिया बलमुआ एल्बम से ये गीत सुन रहे थे और इसी गीत के साथ लोक माधुरी का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। कार्यक्रम में हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को और अब प्रस्तुत है भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रसधार।

अभी आप सुन रहे थे स्नेहा उपाध्याय के स्वर में ये भोजपुरी एल्बम गीत। शब्द विनय बिहारी के थे, धुन अविनाश झा घुंघरू के। और अब ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हम विदेशवा जयबाना एल्बम से। गायक कलाकार है अनन्या सिंह, दीपक त्रिपाठी।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: और अब आइए रसधार कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत 1, 2, 3, 4, 18 साल से, स्वर रितेश।

और इसी गीत के साथ रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, करें कुछ पल का इंतज़ार।

सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे।

मिताली सिंह की आवाज थी। एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम खत्म होता है। रंग

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6

0: 0.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल उद्यानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रुक्मन के तारों को छेड़ गई, जलते अंगारों

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे, मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

नजराना तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना यार के हंसते ही

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंडीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाजा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ देते हैं कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों सी दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती। प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आंख छलक पड़ती। बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत। हवा उसकी जुल्फों को सहलाकर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतरकर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी। नदियों से नहीं उनके सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से। उसके दिल में अजब सा संसार था, एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में। नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी, वो थी पहाड़ों वाली लड़की, जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों की माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाएं कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं।

सुबह ये गाना आपने सुना, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज़, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं और ज़्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा हिमानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां, जहां दिन भर महुआ पर झूले रात को चू पड़ते हैं फूल, जहां दिन भर महुआ पर झूल रात को चू पड़ते हैं फूल, बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल, भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां, विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी, काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफर में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बाहर के झरना नदी चंचलता नीले नंबर अंबर, चांद जवाए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं, और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं, तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है, और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। जरा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं, अगर तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम की टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्चि में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी, ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्चि में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान, बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी।

वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थीं और फिजाएं थीं, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज़, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने

वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे। भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ खास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूट कर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2 दूनी 4 बताइए किसकी है आवाज़, किसका है संगीत और किसका है गीत।

दो दूनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जब पैरों में पॉलीथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना

दिल्ली कठक फिल्म का गाना आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी। आज की इबारत से समझ में आ रहा है भाई, अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं, बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नज़ारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार, पेड़ पौधे, नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गाँव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: मर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो?

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था। और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है, देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सब के सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहां पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी ज़रा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी ये गाना, और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए ये वाला गाना भी लिखा है, जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफ़र में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है। तो आप बताइए क्या था, हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

0: एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय के सम्मान में पटना हाईकोर्ट में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। समारोह में कई न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। बक्सर जिले के इटाढ़ी रेलवे कुमटी पर नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरओबी का उद्घाटन 4 दिन पहले हुआ था। आरओबी का पाया संख्या 5 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस वर्ष 1973 से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर राजधानी पटना के जेपी गंगापत उद्यान परियोजना में पौधारोपण कर 1 लाख पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधारोपण कर धरती पर हरियाली बढ़ाने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी वाहनों का उपयोग करने को कहा। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा से पुलिस ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले की चौथम थाना क्षेत्र में NH 107 पर एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। इधर समस्तीपुर के मुसरी खरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। पटना वाक़े बिहार लोक भवन में मुनक़िद एक तकरीब में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी के बाद जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के एजाज़ में पटना हाई कोर्ट में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर वज़ीर आला सम्राट चौधरी, नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी, महसूलात व इस्लाहात अराजी के वज़ीर दिलीप जायसवाल, खुराक और सार्फिन तहफ़ के वज़ीर अशोक चौधरी, इमदाद बाहमी के वज़ीर रामकृपाल यादव समेत रियासती काबीना के कई अराकीन मौजूद थे। तकरीब में कई जजेज, इंतजामी अफसरान और मुअज्जज़ शख्सियतें भी मौजूद थीं। गौरतलब है कि इससे कबल जस्टिस मीनाक्षी मदन राय सिक्किम हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थीं। वो पटना हाई कोर्ट की दूसरी खातून और 48वीं चीफ जस्टिस बनी हैं। बक्सर ज़िले के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर नवतामीर रोड ओवरब्रिज नुकसान ज़दा हो गया है। हमारे नामानिगार ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इस आरओबी का इफ्तिताह 4 दिन पहले हुआ था। आरओबी का पिलर नंबर 5 पूरी तरह तबाह हो गया है। इसके बाद इंतज़ामिया ने पुल पर आमदोरफ्त मसदूद कर दिया है। आज आलमी यौम माहौलियात है। ज़मीन पर ज़िंदगी को बचाने और बेदारी पैदा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन 5 जून को 1973 से मनाया जाता है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इस मौके पर राजधानी पटना के जेपी गंगापथ बोटानिकल प्रोजेक्ट में शजरकारी करके 1 लाख दरख्त लगाने का काम किया।

0: मंत्रालय ने लोगों से ज्यादा शजरकारी करके जमीन पर हरियाली बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी गाड़ियों को इस्तेमाल में लाने को कहा। इधर हमारे नामानिगारों ने बताया कि आलमी यौम माहौलियात पर माहौलियात के तहफ्फुज़ के अज़्म के साथ कई बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। पूरी रियासत शदीद गर्मी की जद में है। कई मकामात का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा पारा हरारत के साथ बक्सर रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। राजधानी पटना का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर दर्जे हरारत में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान रियासत के शमाल मगरिब और शमाल वस्त हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का भी इंतबाह जारी किया गया है। आज मुकम्मल यौम इनकलाब है। आज ही के दिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। खास सरकारी तकरीब पटना के जेपी गोलंबर पर मुनक़िद की गई, जहां वज़ीर आला सम्राट चौधरी और नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी समेत रियासती काबीना के कई अराकीन ने जेपी के मुजस्मे पर गुलपोशी करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। अररिया जिले की पलासी थाना इलाके में पुलिस ने छापामारी करके एक शख्स को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा से पुलिस ने 2 कार से कसीर मकदार में शराब के साथ 5 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले की चौथम थाना इलाके में NH 107 पर एक तेज़ रफ्तार हाईवा की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों की मौत हो गई। इधर समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना इलाके के गंगापुर गांव के पास एक बेकाबू ट्रक की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। इस वक्त दोपहर के 2:10 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC NDA परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 तक है। इसके अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट नोट कर लें, www.upsc.gov.in। और इधर रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 तक है। इसके अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर लें, www.indianrailways.gov.in। और इधर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC CGL 2026 के आलोक में कुल

12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक है। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर लें, www.ssc.gov.in पर। और इधर भारतीय स्टेट बैंक SBI अप्रेंटिस के कुल 7,150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जून 2026 तक है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट नोट कर लें, www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ

0: बाद बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण

0: संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं।

0: मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते। मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं।
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
1: हाँ मैम,
0: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम बैठी है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने
1: जी
0: का?
1: मैम मिल जाता है मैम, आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज़्यादा। और आप अच्छे
1: यस
0: से अपनी
1: मैम,
0: पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और
0: तो
1: सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं
1: हाँ
0: आप?
1: पढ़ाई तो खत्म है, मैं कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी, दसवीं
0: अच्छा
1: पास।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं,
0: जी
1: मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा, ललिता जी इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में तो निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा,
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी,

0: तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना बना के देती हैं।
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उसको थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है
0: अच्छा
1: तो रात को आता है 9 बजे।
0: अच्छा अच्छा
1: छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो क्या नहीं क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए
1: जी,
0: आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है,
0: ठीक
1: कसम
0: ठीक
1: क्या होती है जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से
1: मैं
0: शहर से?
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से। जी
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो
1: जी
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है,
0: अरे
1: बहू
0: वाह,
1: भी है।
0: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी, मैम अभी 2-3 महीने हुए हैं।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ हैं, कड़क वाली कि अच्छी वाली?
1: नहीं,
0: नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम के टाइम तो हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की,
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो
1: जी
0: आप
1: मैम,
0: थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी
1: जी
0: थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही
1: बिल्कुल।
0: अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: इसलिए मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है। घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से। जी
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा
1: जी
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। तू
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती
1: जी,
0: हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सबसे, मैंने
0: बिल्कुल
1: सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी, तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना। सुबह
0: अरे
1: से
0: वाह।
1: मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिसरी संगीत सविता, भूले बिसरी गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। ये संगीत में अगर
1: हाँ
0: रुचि है ना
1: और
0: आपकी, तो समझिए आपका जीवन
1: हाँ
0: बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज
1: और
0: है।
1: हाँ, और दूसरा और सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं, गमलों में सब में। सबसे
0: अरे वाह।
1: ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, और मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी
1: हाँ,
0: बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीहर जो है जबलपुर का है, तो
0: जी
1: हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में

0: जाते रहे तो वहां पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियां, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते बुझवा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: गाना सुनूंगी गागो साइड खान का, नाचो तू बंसी बजा।
1: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ।
0: जी
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जी
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है। जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम
1: मुझे
0: बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप

0: डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस
0: बिल्कुल,
1: और म्यूजिक तो ऐसी चीज
0: जी एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ फिट भी रहते हैं बहुत
0: जी। तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहा है?
1: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ,
0: हाँ
1: रत्ना सिन्हा,
0: अच्छा, रत्ना जी बोल रही हैं। कहाँ से?
1: बाराबंकी से
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ,
0: जी
1: मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके जी
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल।
1: जो है।
0: आपके परिवार में कौन कौन?

0: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड दो बेटे हैं, बहू है, पोती है छोटी
1: बहुत बढ़िया।
0: सी
1: तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से। तो बताइए
0: जी,
1: जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
0: बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है। मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं
1: अच्छा, आपने लगा रखे
0: और
1: हैं?
0: जी हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी
1: अरे वाह, बहुत
0: रखते
1: बहुत
0: हैं।
1: अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए, वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दो
0: हाँ
1: दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है ये।
0: जी जी
1: और साथ
0: चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है।
1: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें
0: जी
1: अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना।
0: हाँ खुश होती
1: तो
0: हैं, सब
1: बिल्कुल
0: आती हैं, सब खेलती
1: जी,
0: हैं, तो
1: जब
0: बड़ा
1: वो
0: अच्छा लगता
1: चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना।
0: है। जी,
1: तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
1: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी। तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है। मैं
0: तो आप कहाँ से हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है। मैं
0: तो आप कहाँ से हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम,
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा
1: जी
0: लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है। मुझे
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: जाफर सलीम का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं उड़ीसा गरम गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की, बीएससी
0: अरे वाह,
1: नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है। यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है तो?
1: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या है ना, हम उसको
1: हाँ
0: पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के
1: हाँ
0: काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है, तो आप क्या क्या
1: मुझे
0: चीज़ें
1: आज
0: सिल
1: बहुत
0: लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी है। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है, तो
0: अरे वाह,
1: मुझे
0: जून में ही है दोनों बेटियों का
1: हाँ
0: बर्थडे।
1: हाँ और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है,
0: अच्छा,
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे की गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़ें और आपका नाम
1: हाँ
0: रोशन करें। जी, तो आपने बताया कि आप
1: तो
0: सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती
0: अच्छा,
1: हूँ।
0: सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए
1: हाँ
0: कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा
0: तो ये
1: लगता
0: तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत
1: है।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: वो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना,
0: सुजाता का कौन
1: एक
0: सा?
1: जियो हजारों साल
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: कैंसर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। परेशान हूँ मैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, मां ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि मां ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा, और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं। संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो

आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है। पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना, मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हो, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना, अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम खाना लगाओ। लो, मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा, मैं बूढ़ी हूं तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

यहाँ मिल

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा कि मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूं पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश हैं ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी, कह रही थी मेरे

मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छायागीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
4: After a detailed assessment,
5: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
6: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, केम छो बदा अने आपणो सूरत मजा मां ने? तू शू लई आव्यो छो भाई? धन्यवाद दोस्त, सरस मजानु चित्र बनाई देते हैं। जरा एसपी जना लोकवा भाई के भेंट आप मांगे थे।
3: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024

2025 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम घर आंगन की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:00। शाम 6:05 पर सुनिए भोजपुरी बुलेटिन समाचार, जिसे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा। ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। गुड इवनिंग रोहतास, सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 7:15 पर। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल, जिसे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद का प्रसारण समय होगा शाम 7:50 पर। समाचार संध्या हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। रात्रि 9:15 पर सुनिए वंदगी। आकाशवाणी के पटना केंद्र से हम रिले करेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण, समय होगा रात्रि 9:30 पर। वापिस से स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:30 पर। आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर।

भक्ति संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तृप्ति शाक्या को माता रानी एल्बम का ये भजन था। अब आइए सुनते हैं ये भजन।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

सभी सखियों को विनीता सिंह का नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का हमारे इस प्रिय घर आंगन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं सखियां आप सब? मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि हमारी सखियां जहां कहीं भी हमको सुन रही होंगी, हमसे जुड़ रही होंगी, वो बहुत कुशल मंगल होंगी। तो सखियों, शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम और हमारी आपकी बातचीत। सखियों, पहले जब बचपन में आप भी देखी होंगी या हम सब ने गौर किया होगा कि गर्मियों की पहचान, जब गर्मियां शुरू होती थी, गर्मियों की पहचान आम के बौर यानी मंजरी, कुओं तालाब के पानी और मानसून के इंतज़ार से होती थी। दोपहरें तपती थीं, लेकिन मौसम का अपना एक स्वभाव और लय हुआ करता था। आज वही गर्मियां, हीट वेव, जल संकट और मौसम की अनिश्चितता की खबरों के साथ हमारे जीवन में आती हैं। हम सब सुनते रहते हैं फला जगह इतना हीट वेव है, इतना टेम्परेचर है, इतना तापमान है, अत्यधिक गर्मियां पड़ रही हैं। ये सब खबरें, समाचार हम सब सुनते रहते हैं और होती भी हैं। जून की शुरुआत होते होते गर्मी का असर अपने चरम पर पहुंचने लगता है। तापमान के नए रिकॉर्ड की खबरें आने लगती हैं। जल स्रोत यानी जहाँ जहाँ से जल निकलता है वो सिकुड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं और मौसम का व्यवहार पहले से कहीं अधिक अनिश्चित हो रहा है आज के समय में। इस समय कभी अचानक आने वाली बाढ़, कभी लंबे सूखे यानी कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना, तो कभी आसमान असामान्य गर्मी यानी अत्यधिक गर्मी की खबरें हमें लगातार ये याद दिलाती हैं, स्मरण कराती हैं कि पर्यावरण का संकट कोई दूर का खतरा नहीं बल्कि हमारे वर्तमान की वास्तविकता है। यानी ये सब जो जितने सब मौसम परिवर्तन और मौसम का निश्चित नहीं रहना, असामान्य परिवर्तन होता है सखियाँ, ये हमें संकेत देता है कि हमारा पर्यावरण साफ सुरक्षित नहीं है, प्रदूषित है। हम अक्सर पर्यावरण को केवल पेड़ पौधों, जंगलों या वन्य जीवों तक सीमित करके देखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। और जबकि ये सच है कि पर्यावरण हमारे जीवन का वो व्यापक तंत्र है, विराट तंत्र है, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, नदियाँ, जैव विविधता और जलवायु सब शामिल हैं। यानी हम सिर्फ पेड़ पौधों, जंगल तक ही पर्यावरण को ना देखें, ना सोचें, हमारे आसपास के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं सभी पर्यावरण

पर्यावरण है और इसी तंत्र पर हमारी खेती यानी कृषि, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, भविष्य सब निर्भर करता है। यानी कि अगर हमारा पर्यावरण खराब है, पर्यावरण प्रदूषित है, तो ये सारी चीज़ हमारी कृषि, पानी नहीं होगी तो कृषि, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, भविष्य सब कुछ इसी पर डिपेंड है। और इसी साझा जिम्मेदारी और चिंता को केंद्र में रखने के लिए ही हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सखियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व में पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए, प्रदूषित ना हो इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। ये केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है, यानी फॉर्मेलिटी पूरा करने वाला दिवस हम लोग ना इसको मनाएं, बल्कि ये याद दिलाने का, ये दिवस जो है वो याद दिलाता है कि अवसर है, याद दिलाने का अवसर है कि विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक बनाकर देखना होगा। हमें विकास भी चाहिए, तरक्की भी चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित भी रखना है। और इस कॉन्सेप्ट पे, यानी कि पर्यावरण और विकास दोनों हों, तरक्की के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस संकल्प लेने भर का दिन नहीं है सखियां, बल्कि ये हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार को बदलने की मांग करता है। सबसे ज़रूरी बात है सखियां कि जो हमारा बिहेवियर है पर्यावरण के प्रति, हमारी जो जिम्मेदारी है वो बदलनी बहुत ज़रूरी है। हम सब ही पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, हमारा बहुत सारा, ये सिर्फ सरकार की या सामाजिक संगठन की नहीं जिम्मेदारी है, हम सब की ज़रूरत है, हम सब की जिम्मेदारी है। और हम सब अपने जीवन में क्या करते हैं कि पर्यावरण को अनजाने में प्रदूषित करते रहते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस संकल्प लेने भर का दिवस नहीं है, बल्कि ये हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार को बदलने की मांग करता है। हम सब ये भली भांति जानते हैं कि इस समय सबसे अधिक हमारे पर्यावरण को अगर नुकसान कुछ पहुंचाता है तो वो प्लास्टिक। प्लास्टिक ही एक ऐसा मटेरियल है, वैसे तो हम हवा, पानी, मिट्टी सभी को प्रदूषित करते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कारण आता है वो प्लास्टिक के वजह से। प्लास्टिक के वजह से हमारा हवा, मिट्टी, पानी सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। और हम सब अपने जीवन में सुबह दूध की थैली से लेकर पानी के बोतल, लंच बॉक्स तक प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। शैम्पू, साबुन, कोई भी सब्जी, दूध, दही, रोज़मर्रा के सामान हम सब प्लास्टिक की थैलियों में यूज करके लाते हैं या ख़रीद के लाते हैं या यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये सब प्लास्टिक में होते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नहाने से लेकर सोने और घर, ऑफिस, यात्रा, सभी जगह हमारे लगभग सभी सामान प्लास्टिक में ही रहते हैं। और इन्हें यूज करके यानी प्रयोग करके हम सब कहीं ना कहीं इन्हें फेंक देते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे होती है कि अगर हम प्लास्टिक यूज भी करते, पहली बात तो अपनी ज़िंदगी से बाहर करना है प्लास्टिक को। कुछ प्लास्टिक्स होते हैं कि जो जैसे बाल्टी, टब है कि लंबे समय तक प्रयोग होते हैं, प्रयोग करने के बाद टूट जाते हैं तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो पत्ती पत्ती थैलियाँ होती हैं, इनको तो हम झोले या जूट पैक से बिल्कुल हटा सकते हैं अपने जीवन से। और यही सबसे ज़्यादा उड़ के हवा से, आंधी में उड़ के नालों में, तालाब में, नालियों में जाके उनको जाम कर देते हैं। तो अगर सखियां हम सब जो है ये कोशिश करें कि प्लास्टिक से होने वाले जो नुकसान हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम सब सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से दूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े, जूट के थैले का प्रयोग करें, जो भी प्लास्टिक के सामान हैं उन्हें रीयूज करें और रिसाइकिल करें, इधर उधर कहीं भी ना फेंकें। इससे जो हमारे जल स्रोत होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उनमें अवरोध हो जाता है। बरसात में अक्सर सखियाँ देखती हैं शहरों में पानी भर जाते हैं, जाम हो जाती हैं। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम जितना प्लास्टिक से दूर रहें, जितना प्लास्टिक को कम यूज करें। तमाम तरह के हेल्थ इशू होते हैं प्लास्टिक से और पर्यावरण का तो नुकसान होता ही होता है। तो विश्व भर में पर्यावरण दिवस हमें ये याद दिलाता है हम सबको कि पर्यावरण संरक्षण कोई अतिरिक्त काम नहीं है कि हम सोचें कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा काम करने जा रहे हैं, बल्कि हमारे भविष्य की बुनियादी ज़रूरत है। जितनी जल्दी हम प्रकृति के साथ संतुलित संबंध स्थापित करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आने वाली हमारी

यहाँ एक सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण पर्यावरणीय रूप से संतुलित और जल संपन्न दुनिया में विरासत के रूप में संभालेंगी पाएंगी, यानी हम अपने बच्चों के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उन्हें दे करके जाएंगे। सिर्फ पेड़ पौधे जंगल नहीं, नदियाँ जल तालाब बावड़ियाँ कुएँ ये जितने हैं पानी के साधन, हमारी मिट्टी, और जब ये सब शुद्ध साफ होंगे तो हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि तमाम सारे ऐसे शोध आते हैं कि प्लास्टिक के ज़्यादा यूज करने से या लंबे समय तक यूज करने से कैंसर तक होता है, तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। पर्यावरण अगर हमारा शुद्ध साफ है, और पर्यावरण के जितनी भी चीज़ हैं, धरती पानी हवा जल जंगल ज़मीन जितनी भी हैं साफ़ हैं, तो हम खुद स्वस्थ रहेंगे। तो सखियों, आज है पर्यावरण दिवस और आपके साथ हमने इतनी सारी जानकारियाँ साझा की। अब चलिए चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गाना।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सखियों, हम सबके लिए यानी हमारे जीवन के लिए सबसे मूलभूत जरूरतों में से एक है भोजन, क्योंकि भोजन के बिना हम सब जीवित ही नहीं रह सकते हैं, ये तो पता ही है सखियाँ। तभी तो कहा गया है कि जीवन के लिए आवश्यक आवश्यकताओं में तीन चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी यानी भोजन को प्रथम स्थान मिला है यानी पहला दर्जा है।

क्योंकि भोजन के बिना हम सब जीवित ही नहीं रह सकते हैं, ये तो पता ही है सखियाँ। तभी तो कहा गया है कि जीवन के लिए आवश्यक आवश्यकताओं में तीन चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी यानी भोजन को प्रथम स्थान मिला है, यानी पहला दर्जा है। हमारे जीवन का आधार हमारा भोजन कैसा हो, किस तरह का हो, उस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम कैसे हो सकते हैं। कहने का मतलब है सखियाँ कि हम सब सदा स्वस्थ एवं सुखी प्रसन्न रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कैसा भोजन कर रहे हैं, किस तरह का भोजन कर रहे हैं, और ये भोजन हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा असर डालता है। खाना तो हम सब खाते हैं, सभी के घरों में खाना बनता है, लेकिन खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक हम किस प्रकार खाना बनाते हैं और क्या क्या खाते हैं, इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे तन मन और धन पर पड़ता है। अब सखियाँ सोच रही होंगी कि तन मन पर तो पड़ता ही है, लेकिन धन पर कैसे पड़ता है? तो सखियाँ बात यह है कि जब हम साफ़ सुथरा स्वच्छ ताज़ा खाना खाते हैं तो हमारा तन तो तंदुरुस्त होता ही है। तन तंदुरुस्त होता है तो काया अगर निरोगी है तो मन भी प्रसन्न रहता है, यानी तन मन का तो सीधा संबंध हो गया। अब धन कैसे प्रभावित होता है? तो जब हम तन से और मन से प्रसन्न और सुखी स्वस्थ रहते हैं तो हमारा धन बचता है, यानी कि जब हम गलत सलत खा के बीमार पड़ेंगे तभी तो हॉस्पिटलाइज होंगे, तभी तो हम अस्पताल जाएंगे, इलाज कराएंगे और बीमार पड़ेंगे, तो हमारा काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो सबसे पते की बात ये है सखियाँ कि अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, ताज़ा खाना खाते हैं, शुद्ध साफ बना हुआ या खुद बनाकर खाते हैं, तो हमारा तन मन धन दोनों बचता है, यानी तन जो है तंदुरुस्त होता है, मन प्रसन्न होता है और धन की तो बचत होती ही है। तभी तो कहा गया है जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, यानी अन्न का प्रभाव हमारे तन मन और धन तीनों पर पड़ता है। और स्वास्थ्यकर आहार लेने से तन तंदुरुस्त होता है, और जब तन स्वस्थ है तो मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है, और दोनों का प्रसन्न रहना यानी धन की बचत हुई। तो सखियों, हम सब कैसा आहार लें जिससे सदा स्वस्थ प्रसन्न निरोगी रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब सदैव पौष्टिक संतुलित और सुरक्षित आहार लें। पौष्टिक संतुलित आहार का मतलब है कि हमारे प्रतिदिन के भोजन में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, सोडियम, ये सब भरपूर मात्रा में हमारे शरीर और उम्र के हिसाब से हो। यानी कि हम जो प्रतिदिन खाते हैं हमारे भोजन की थाली में, दोपहर में जब हम पूरा भोजन लेते हैं तो रोटी चावल के साथ साथ दाल, हरी सब्जी और दही या छाछ मट्ठा जो पसंद करते हैं, साग सलाद, ये सब कुछ हो, सुबह अंकुरित अनाज ये ले सकते हैं, फल मेवे, शाम को भुने चने, रात में सोते समय दूध पिए, या जब भी आपको दिन भर में पसंद हो दूध ले लें, गर्मियों के समय में दूध, लस्सी, छाछ ये सब पीते रहें, यानी आपके डाइट में, प्रतिदिन के डाइट में ये सारी चीज़ें सम्मिलित हों। सुबह से लेकर रात तक अपने आहार का मेनू बना लें और अपनी पसंद के, यानी भोजन जो आपको पसंद है उसके अनुसार आप ये सब चीज़, आपके चार्ट में जो जो भी खा रही ये सारी चीज़ होनी चाहिए, और फाइबर भी हो, कैल्शियम भी हो, प्रोटीन भी हो। और आप सब जानती हैं कि ये सारी चीज़ें किन में मिलती हैं, प्रोटीन दाल में मिलता है, कैल्शियम दूध में मिलता है, तरह तरह की सब्जियों और फलों में विटामिन्स भरपूर मिलते हैं, और साग, ये सारे चीज़ आयरन के सोर्स होते हैं, तो आप इससे युक्त खाना लीजिए। साथ ही साथ सखियों, भोजन संतुलित पौष्टिक होने के साथ साथ भोजन सुरक्षित। सुरक्षित का मतलब है कि आप जो भोजन बना रही हैं, खा रही हैं या कहीं से भी खा रही हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बाहर खाते हैं, तो इसका ख्याल रखें कि जहां से भी भोजन ले रहे हैं वो साफ हाइजीनिक हो, और घर में बना रही हैं तो घर बनाने से पहले हाथ को अच्छे से साफ़ करके, और खाने से पहले भी भोजन बनाने वाले का और भोजन करने वाले दोनों के हाथ बहुत साफ़ सुथरा होना
करना चाहिए, हैंड वॉश करके ही खाना खाएं, क्योंकि हाथों के माध्यम से हमारे पेट में बैक्टीरिया जो खराब बैक्टीरिया, अगर हम हाथ नहीं धुलते हैं तो खराब बैक्टीरिया हमारे पेट में प्रवेश कर जाती हैं, आंतों में

ली जाती हैं और उससे क्या होता है, सखियाँ की कलरा, हैजा, उल्टी, दस्त, ये सारी परेशानियाँ हमें होने लगती, फूड पॉइजनिंग तक हो जाता है। और फूड पॉइजनिंग होने का मतलब है, या ये सारी परेशानियाँ, स्वास्थ्य जनित परेशानियाँ जब हमें होती हैं तो हमारा इलाज होता है, हम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें एडमिट किया जाता है और बहुत सारे पैसे हमारे खर्च होते हैं। तो संतुलित, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन हमें लेना ज़रूरी है और इसके लिए यही है कि हम थोड़ा सा सावधानी बरतें, अपने पसंद की चीज़ें खाएं, उसमें ये ध्यान रखें कि सारे पौष्टिक चीज़ उसमें हो, यानी प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन से भरपूर हम जो कुछ भी फल, दही, दूध जो भी खा रहे हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, अन्य जो भी ले रहे हैं, इन सब चीज़ों से भरपूर हों। और सफाई का बहुत ख्याल रखें, ज़्यादा मीठी, अच्छा खाने के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सखियाँ, अगर हम स्वस्थकर आहार ले रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए और साफ़ सुथरा ताज़ा खाना खा रहे हैं, बासी खाना नहीं खाना है, तो सबसे ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए संतुलित पौष्टिक भोजन के साथ साथ कि हम क्या ना खाएँ, वो ज़्यादा असर हमारे स्वास्थ्य पे डालता है। ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, अत्यधिक नमक, तेल, मसाले, चिकनाई, बाहर की चीज़ें, पैकेज्ड फूड, ये सारी जो खाने की चीज़ें होती हैं ये हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। डिब्बाबंद भोजन जो कुछ भी हमें मिलता है वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या कभी कभार खा ली तो ठीक है और नहीं तो प्रयास करिए कि एकदम ना खाइए। तो इस तरीके से अगर आप भोजन लेती हैं तो आपका आहार अगर इस तरीके से रोज़ाना प्रतिदिन के उसमें रहता है डाइट में, तो आप हमेशा स्वस्थ सुंदर रहेंगी। और हम सब के लिए ज़रूरी है कि हमेशा पौष्टिक, संतुलित और सुरक्षित भोजन करें। और अब चलिए फिर से संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है हम सब के लिए, और आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती है। पैसे कमाने से आर्थिक आत्मनिर्भर हम हो जाते हैं, चाहे कोई नौकरी करें, व्यवसाय करें, रोजगार करें, तो इससे हम आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। और जब आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनते हैं तो हम एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं, जाहिर सी बात है, खुद के फैसले लेते हैं। तो ये तो हुई आर्थिक निर्भरता की बात। लेकिन सखियों, पता है हमें हर तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए, और जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, किसी के बंधन में नहीं रहते हैं, हम खुद के भी बंधन में नहीं रहते हैं। अब मान लीजिए सखियाँ, जितना ज़्यादा हम स्किल्ड होंगे, जितना ज़्यादा जो रोज़मर्रा से संबंधित काम होते हैं वो हम जानेंगे, उतना ज़्यादा हमारा ज़िंदगी जो है स्मूथ चलेगा, ज़िंदगी आसानी से चलेगी। अब जैसे सखियाँ है कि किसी को कोई एक हुनर आता है, लेकिन कोई कोई आप देखती हैं कि मल्टी टैलेंटेड होती हैं, उनके पास कई हुनर होते हैं, घर का काम भी आता है, जॉब भी करती हैं, सिलाई कढ़ाई भी आती है। इसी तरीके से आज के समय की मांग कहिए या ज़रूरत कहिए कि हमें ड्राइविंग भी आना चाहिए, गाड़ी चलाना भी एक हमारे ज़रूरतों में से एक है, क्योंकि आज हम सब के पास गाड़ी है और हम सब गाड़ी साधन घर में रखते हैं, चाहे दो पहिया हो, चार पहिया हो, सभी के घरों में लगभग होती ही है। और अगर हमें चलाना, पुरुष तो जानते हैं लेकिन हम सखियाँ थोड़ा गाड़ी चलाने में पीछे रहती हैं, नहीं सीखना चाहती हैं, तो अगर हम सखियाँ ड्राइविंग सीख लें, अब मान लीजिए पति का ही तबीयत ख़राब हो गया, बच्चे का ही हो गया और कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं है, हम कैसे ले जाएंगे उनको, रात का समय है। तो अगर हम ड्राइविंग सीख लेते हैं तो इस मुश्किल वक्त में, या खुद के लिए भी ज़रूरी है, आज बहुत सारी सखियां हमारी ड्राइविंग सीख गई हैं, वो ऑफिस जाती हैं खुद बाइक चला के, स्कूटी चला के, कार चला के, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग सीखना। हम अपनी फैमिली का मदद कर सकते हैं, पड़ोसी का भी मदद कर सकते हैं, या खुद की मदद कर सकते हैं, अपना काम आसान बना सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है, हमारे अगल बगल का या हमारे फैमिली मेम्बर कोई बीमार हो गए, ड्राइवर नहीं है, तो हम खुद चला के गाड़ी ले जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और कुछ लोग तो होते हैं जो हायर कर लेते हैं ड्राइवर, लेकिन हर किसी का बजट भी नहीं होता है ड्राइवर रखने का। तो अगर हम ड्राइविंग सीख लेते हैं, खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो हमारा जीवन आसान हो जाता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हम एक तरीके से निर्भर हो जाते हैं, दूसरे पर हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती, निर्भरता ख़त्म हो जाती है। तो ड्राइविंग सीखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर महिलाओं के लिए ज़रूरी है। और इसी बातचीत के साथ सखियों, अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है, तो अपनी सहेली विनीता सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। सखियों, नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुआ चाहते हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ संजय सिंह से समाचार सुनी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के शपथ लिहली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उनका के पद और गोपनीयता के शपथ दिलवैले। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के जगह लिहले बाड़ी जे काल सेवानिवृत्त भइले रहले। न्यायमूर्ति राय एकरा से पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहली। वहां के पटना हाईकोर्ट के दूसरी महिला आ 48वां मुख्य न्यायाधीश बनल बाड़ी। हमार संवाददाता बतौले कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी आ राम कृपाल यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई गो सदस्य उपस्थित रहले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़े कि अगिला 2 साल में 50 लाख घरन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगावल जाई। आज पटना में पर्यावरण दिवस के मौका पर एगो कार्यक्रम के संबोधित करत श्री चौधरी कहले कि एह संबंध में केंद्र सरकार के साथे जल्दीए एगो समझौता ज्ञापन पर दस्तखत कल जाय। वहां के कहनी कि 125 यूनिट बिजली से बेसी सौर ऊर्जा उत्पादन भइला पर सरकार के ओरी से उपभोक्ता सबके भुगतान कल जाय। बक्सर के इडाढ़ी रेलवे गुमटी पर नव निर्मित रोड ओवर ब्रिज टूट गइल बा। हमार संवाददाता बतौले कि 26 करोड़ 40 लाख रुपया के लागत से बनल ईआरओबी के उद्घाटन कुछ दिन पहले भइल रहे। आरओबी के पावर संख्या 5 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गइल बा। एकरा बाद प्रशासन पुल पर आवागमन बंद कर देले बा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। एकर उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगन के जागरूक कैल आ सामूहिक भागीदारी के बढ़ावा देवल बा। ई अवसर पर पर्यावरण बचावे के संदेशा के साथे पूरा राज्य में कई गो कार्यक्रम आयोजित कैल गैल। राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पौधा लगा के 1 लाख पेड़ लगावे के काम के शुभारंभ कैले। एह मौका पर श्री चौधरी लोगन से ज्यादे पौधा लगा के हरियाली बढ़ावे के अपील कैले बाणे। मुजफ्फरपुर के एगो निजी अस्पताल में आग लगला से 6 गो लोगन के भइल मौत के मामला में पुलिस 3 लोगन के गिरफ्तार कैले बिया। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी बतौले कि आईसीयू में तैनात चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार, एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार के गिरफ्तारी भइल बा। उ बतौले कि एह मामला में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के आवेदन पर ब्रह्मपुरा थाना में शिकायत दर्ज कैल गइल बा। एह मामला में अस्पताल के निदेशक के भूमिका के भी जांच कैल जा रहल बा। एने ई अग्निकांड मामला के लेके राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कैल गइल बा। याचिकाकर्ता वकील एसके झा सेवानिवृत्त न्यायाधीश के देखरेख में उच्च स्तरीय जांच करावे के मांग कैले बाणे। पूरा प्रदेश कड़ाके के गर्मी के चपेट में बा। कई जगहन के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल गइल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथे बक्सर राज्य के सबसे गर्म जगह रहल। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कैल गइल। मौसम के अनुमान में कहल गइल बा कि अगिला 2 से 3 दिन के दौरान तापमान में कोनो खास बदलाव के संभावना नहीं खे। वही जे अगिला 24 घंटा में राज्य के कुछ हिस्सा में हल्का बरखा हो सकेला। एह दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भाग में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धूल भरर आंधी चले के भी चेतावनी जारी कैल गइल बा। आज संपूर्ण क्रांति दिवस हवे। आजो के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के नारा देले रहले। मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी गोलंबर पर कैल गइल, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

0: आ उप मुख्यमंत्री विजय कुमारी चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई गो सदस्य जेपी के मूर्ति पर माल्यार्पण क के उनका के श्रद्धांजलि दिहलस लोग। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

आज गांव घर कार्यक्रम संगे हम दिनू भाई सब श्रोता भाई बहन के राम राम। श्रोता सभे ए घड़ी जौन गर्मी गिरता एकरा में तनिको सा लापरवाही हमनी खातिर बहुते भारी पड़ी। श्रोता भाई बहन अपना घर के छोट बच्चा या बड़ बुजुर्ग होखस तो उनका पर विशेष ध्यान दही, बिना जरूरत के बहरी मत निकले दही। आ एह समय जौन समय चल रहल बा तुरंत बरसात शुरू होखेला आ बरसात चढ़ते तरह तरह के बीमारी भी आवेला। श्रोता भाई बहन हमनी के चाही कि अपना घर के छोट छोट बच्चा होखस या गर्भवती स्त्री होखस उनका के समय वाला टीका जरूर दिलवा दी। टीका अगर समय से दियाई रही तो बहुत सा समस्या से बचल जा सकेला। यही तरह हमनी के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अगर सच कहल जाओ तो रीढ़ वाली सन मवेशी जौन कि हमनी का पल्ले बनी जा, कोई दूध खातिर पल्ले बा तो कोई बेच बकरा बकरी बेच के भी लाभ कमा रहल बा। एह गर्मी में तनको सा लापरवाही ओहनियों पर भारी पड़ी। श्रोता भाई बहन गाय रखले बनी अगर भैंस रखले बनी बकरी पालन कैले बनी तो यह समय जवन समय आ रहल बा एह समय में रोगाणु आ विषाणु जनित रोग बढ़ेला। ऐसना में टीका ही सबसे कारगर होला काहे कि टीका जौना पशु के दिया जाए या चाहे जेकरा के भी दिया जाए तो उ रोग शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई नतीजा सामने रही कि रोग पंजरा ना आवे दी। आ रोग हो गिला के बाद तो बड़ा परेशानी उठावे के पड़ता। श्रोता भाई बहन हमनी के हर हाल में अपना स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देवे के चाही काहे कि स्वास्थ्य बात सब कुछ बा। असली धन अगर कहल जाए समझल जाए तत् स्वास्थ्य बा। श्रोता सभे हमनी का ई जरूर चाही कि आज विश्व पर्यावरण दिवस मनावल जा रहल बा तो हमनी के आपन पर्यावरण कैसे बचावल जाई ई सबका दिमाग में रहे के चाही काहे कि पर्यावरण बा तो हमनी के बन जा। श्रोता भाई बहन अब हमनी के आज के कार्यक्रम के बारे में जान लिहल जाओ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है ऐसे आज के चर्चा के विषय बा पर्यावरण को संतुलित रखना है आवश्यक। एकरा बाद नीलेश्वर मिश्रा से के गावल लोकगीत सुनल जाई। लोकगीत के बाद समय हुई वार्ता के। आज के वार्ता के विषय रही वृक्षारोपण आज की जरूरत। वार्ताकार होखब राम भरत सिंह। आज एक जानकारी के विषय बा अवैध रूप से आ अनियमित रूप से मछली पकड़ल बा गैर कानूनी काहे कि एकर आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।

अंत में कुछ सामयिक सलाह के साथे साथे मौसम पूर्वानुमान पर भी एक नज़र डालल जाई। श्रोता सभे ई रहल कार्यक्रम के संक्षिप्त जानकारी। अब समय बार चर्चा के, तो जैसन कि हम कहनी है कि आज पर्यावरण दिवस है आ चर्चा के विषय भी बा कि पर्यावरण को संतुलित रखना है आवश्यक। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहल बा ई कोई के बतावे के चीज नहीं है। श्रोता भाई बहन लौक रहल बा कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे बढ़ रहल बा। आज जितना तेज गर्मी पड़ रहल बा ई गर्मी कौन चीज के देन बा। आज कु समय में जल के दिक्कत हो जाता, नदी नहर तालाब पोखरा सब सूखा जाता, यहाँ तक कि कहीं कहीं कल भी टंगाई लगाता, कल भी सूखे लगाता। श्रोता भाई बहन देखल जाए तो कौन चीज के देन बा। हमनी के आसपास प्रकृति प्रदत्त जितना भी चीज लौकता उस सब पर्यावरण के अधीन बा। आज हमनी के जेने ताकत नहीं जा उन्हें प्लास्टिक के उड़त नजर आवता, ई कौन चीज के देन बा। श्रोता भाई बहन हमनी का ना चेतल जाई तो आगे आवे वाला पीढ़ी के बड़ा कष्ट होई। आ उ पीढ़ी हमनी के कोसी कि हमनी के पहला पीढ़ी यह बात पर ध्यान ना दिलस। श्रोता सभे बाजार जातनी तो हाथ में का एगो झोला रखल खराब बात बा। आदमी दोनों हाथ डोलावत जाता ई दिमाग में बटुए कि प्लास्टिक में तो सामान मिलबे करी, प्लास्टिक हम लेके आई। एगो प्लास्टिक के गले में 500 साल लग जला। तनी विचार करी कि जितना तेजी से एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग बढ़ रहल बा का वो दिन दूर बा जबकि धरती के नीचे खाली प्लास्टिके हो जाई। एकर नतीजा ये हुई कि धरती के नीचे एक बूंद जल ना जाई। आ नतीजा देखिए रहल बनी कि कतना तेजी से गर्मी बढ़ रहल बा। श्रोता भाई बहन सरकार भी बहुत प्रयास करता कि पर्यावरण संतुलन बनल रहो, एकरा खातिर विश्व के नेता लागल बणन। आ सबसे बड़ जवाब देही बा हमनी के। कोई कह सकेला मानल के तो हमनी के बा। हमनी के पेड़ लगावत नहीं जा जरूर, लेकिन ओकर देख रेख नहीं जा करत। का एकरा से वो पेड़ बड़ा होई। श्रोता भाई बहन जैसे छोट बच्चा के देख रेख कल जला वही तरह जे पेड़ लगावेला ओकरा करे के चाही। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, कतनी लोग कोई माई के नाम पर तो कोई पिता के नाम पर तो कोई कुछ खातिर तो कोई कुछ खातिर वृक्ष लगा रहल बा। लेकिन वृक्ष लगावल ही काफ़ी नहीं है, वृक्ष के देख रेख करके ओकरा के बड़ा बनावल भी जरूरी बा। श्रोता भाई बहन हमनी के हर हाल में पेड़ लगावे के चाही। जितने जगह होखे उतने में पेड़ लगाई। अगर जगह नहीं है तो गमला में भी पौधा लगाई, लेकिन लगाई कहे कि पौधारोपण आज के सबसे बड़ जरूरत बा। अगर पर्यावरण संतुलित करे के बा तो अधिक से अधिक पेड़ लगावे के पड़ी। पेड़ ना लगावल जाई तो पर्यावरण के संतुलन ना बनी। श्रोता भाई बहन अब आई हमनिका नीलेश्वर मिश्रा से एगो लोकगीत सुनल जाओ।

श्रोता भाई बहन, अभी हमने का नीलेश्वर मिश्रा से ही लोकगीत सुननी जा बड़ा नीमन लागल। इतना नीमन लोक गात गिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता भाई बहन। अब समय एक बार वार्ता के, पौधारोपण क्यों है जरूरी, ई वार्ता के विषय है। वार्ताकार बनी राम भरत सिंह।

वृक्षों के समूह को वन, उपवन, जंगल कुछ भी कहकर पुकारा जा सकता है। वृक्षों को प्रकृति के राजकुमार और वनों, उपवनों या जंगलों को उनकी जन्मभूमि कह सकते हैं।

दूसरे शब्दों में वृक्षों के समूह से ही वन बनते हैं और वन प्रकृति के जीवनदायक सौंदर्य का साकार रूप हुआ करते हैं। वृक्ष और वन हमें अनेक प्रकार के फल, फूल, छाया, लकड़ी, हवा आदि तो देते ही हैं, जिसे हम प्राण वायु या जीवनदायिनी शक्ति कहते हैं। उसका स्रोत भी वास्तव में वन और वृक्ष ही हैं। इतना ही नहीं, धरती और उस पर स्थित अनेक रंग रूपों वाली सृष्टि का आज तक जो संतुलन बना हुआ है, उसका मूल मंत्र भी वन और वृक्ष ही हैं। धरती पर लगे कल कारखाने या अन्य प्रकार के तत्व जो अनेक प्रकार के प्रदूषित तत्व, गंदी हवाएं, दम घोंटू गैसें या इसी प्रकार के अन्य विषैले तत्व उगलते रहते हैं, समस्त मानव जीवन और प्राणी जगत की उन सबसे रक्षा भी निश्चय ही वन और वृक्ष ही कर रहे हैं। उनका अभाव सर्वनाश का कारण बन सकता है। श्रोताओं, संसार में आदि अनादि काल से ही वृक्षों को उसकी महत्ता के कारण पूजा जाता है। वृक्षों को प्राचीन ग्रंथों में मानव के पुत्र समान बताया गया है। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि इसके लगाने से मानसिक तनाव या कष्ट दूर होते हैं। जैसे जल ही जीवन है, वैसे ही पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है। भारत में माना जाता है कि विभिन्न वृक्षों में भिन्न भिन्न देवता, नाग, अप्सरा, परी आदि का वास होता है। हमारे यहाँ सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हरे वृक्ष का अंग भंग करना या जड़ से काटना पाप समझा जाता है। अतः मानव के सच्चे दोस्त वृक्ष ही हैं। वृक्ष निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा मानव को देता है, हमको देता है। श्रोताओं, वनों वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है, अतः वृक्षारोपण आज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए अन्न, जल की व्यवस्था, सांस ले पाने का सुप्रबंध भी वन वृक्ष ही करते हैं। वर्षा का कारण ये वन वृक्ष ही हैं कि जिससे धरती हरियाली प्रदान कर अन्न जल का उत्पादन कर हमारा भरण पोषण करता है। सोचिए, यदि वर्षा न हो तो एक दिन सारी नदियाँ, कुएँ और पानी के अन्य स्रोत सूख जाएंगे, धरती बंजर और फिर धीरे धीरे धूल राख का ढेर बनकर रह जाएंगी। स्पष्ट है कि वन और वृक्षों का अस्तित्व धरती और इस पर रहने वाले प्राणी जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इनका अभाव जो स्थिति पैदा कर सकता है, उसकी कल्पना भी संभव नहीं। श्रोताओं, वनों वृक्षों का महत्व जानते समझते हुए भी आज हम कुछ पैसों के लोभ के लिए उन्हें काट कर जलाते, बेचते या अन्य प्रयोग करते हैं। इससे नदियों, पर्वतों आदि का संतुलन तो बिगड़ ही रहा है, प्रकृति और सारे जीवन का संतुलन भी बिगड़ रहा है। नतीजा प्रदूषण का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। गीले पर्वतों और जल स्रोतों के आसपास उगे वनों वृक्षों को काट डालने का ही वह परिणाम है। अब बाढ़ों का प्रकोप कहीं अधिक झेलना पड़ता है। समय पर वर्षा नहीं होती, जिससे सूखे के थपेड़े सहने पड़ते हैं।

0: वन वृक्ष अवश्य काटने और उनकी लकड़ी हमारे उपयोग के लिए ही हैं, पर हमारा यह भी तो कर्तव्य बन जाता है कि यदि एक वृक्ष काटते हैं तो उसके स्थान पर एक अन्य उगाएं भी। परंतु हम तो वनों को मैदानों और बस्तियों के रूप में बदलते जा रहे हैं, आखिर ऐसा कब तक चल सकेगा? निश्चय ही अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। इस बात को आज के ज्ञानी विज्ञानी मानव ने अच्छी प्रकार समझ लिया है, तभी तो आज न केवल हमारे देश बल्कि विश्व के सभी देशों में वृक्ष लगाने की प्रक्रिया वन महोत्सव के रूप में मनाई जाने लगी है। पेड़ उगा वनों को फिर से लगा कर हम उन पर नहीं बल्कि अपने पर ही कृपा करेंगे, अपनी भावी सुरक्षा की योजना ही बनाएंगे। श्रोताओं, भारत में वनों वृक्षों की कटाई अंधाधुंध हुई है, फलतः प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसे जान लेने के बाद ही आज हमारे देश में प्रगति और विकास के लिए सरकारी या संस्थागत रूप में जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, वृक्ष उगाना और वन संवर्धन भी उनमें से एक प्रमुख कार्य है। प्रायः हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में वृक्षों के पौधे रोपे जाते हैं, पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि पौधा रोपण के बाद हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, रोपित पौधा का ध्यान नहीं रखते, उसे या तो आवारा जानवर चर जाते हैं या पानी के अभाव में सूख मुरझाकर समाप्त हो जाते हैं। यदि सचमुच हम चाहते हैं कि मानव जाति और उसके अस्तित्व की आधार स्थली धरती प्रकृति का संतुलन बना रहे, तो हमें काटे जा रहे पेड़ों के अनुपात से कहीं अधिक पेड़ उगाने होंगे। अनावश्यक वन कटाव कठोरता से रोकना होगा। इसके लिए मानवीय रक्षा और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का अन्य कोई चारा या उपाय नहीं है सिवाय वृक्षारोपण का। श्रोताओं, इस प्रकार वृक्षारोपण या वन महोत्सव का महत्व स्पष्ट है। हमने सार्थक रूप से वन महोत्सव आज इसलिए मना और उसके साथ जुड़ी भावनाओं का साकार करना चाह रहे हैं, ताकि मानव जीवन भविष्य में भी हमेशा आनंद उत्सव मना सकने के योग बना रह सके। वह स्वयं ही घूंट कर दम तोड़ने को बाध्य न हो जाए, सजग सकार रह कर फल फूल सके। इस तरह मानव जीवन का सत्यम शिवम सुंदरम की मनोहारिणी छटा दर्शन मात्र वृक्षारोपण कार्य से ही संभव है।
1: श्रोता भाई बहन, अभी हमनी का राम भरत सिंह के ई वार्ता सुननी जा, बड़ा बढ़िया लागल। इतना बढ़िया वार्ता सुनौला खातिर राम भरत सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद। आ अब संदेश सुन लेवे के।
2: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पाख।
3: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
2: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
3: आकाशवाणी का

0: चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
0: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
2: श्रोता सभे अभी संदेश सुननी जा। आज जैसन कि हम कहले रहे हैं कि एक जानकारी के विषय बा, प्रतिबंधित क्षेत्र में मछली नहीं है मारे के। मछली के अगर हुआ बिजनेस के लिए बनी तो ठीक बा, लेकिन अवैध व्यापार मत करी। मछली के अवैध रूप से चाहे अनियमित रूप से जोन पकड़ बा ओकर गैर कानूनी बा, एकरा से बचे के चाहिए। श्रोता भाई बहन, प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे सेंचुरी चाहे आरक्षित तालाब, प्रतिबंधित समय से अब एगो बात रुआ जानी कि प्रतिबंधित समय मछली मारे खातिर कौन हो सकेला। श्रोता भाई बहन, जब मछली के प्रजनन काल होला वह समय मछली ना मारे के चाहिए। चाहे निषेध तरीका कोनो जौन पारंपरिक तरीका बा ओकरा से हट के कोनो तरीका ना अपनावे के चाहिए, जैसे कि कोनो विस्फोटक से मछली मारना या जहर दे के मछली मारना। बहुत लोग करेंट के उपयोग करके भी मछली पकड़ेला, ये सब गैर कानूनी बा। हमनी के देश में प्रत्येक राज्य में सख्त मत्स्य पालन कानून का नियम लागू बा। अवैध शिकार करत पकड़ेला पर कड़ा कानूनी कार्रवाई आ भारी आर्थिक जुर्माना के प्रावधान बा। मछली के अवैध शिकार से बचे के चाहिए। श्रोता भाई बहन, अब हमनी का कुछ सामयिक सलाह जान लिहल जाओ। आज हमनी के पशुपालन खातिर सलाह ई बा कि गलघोटू आ लंगड़ी रोग से बचाव खातिर टीकाकरण करावे के आवश्यकता बा, आ सब दुधारू पशु में टीकाकरण जरूर करवा दही। नया गेहूं के भूसा खियावे से पहले 2 घंटा पानी में फुला दही ताकि मुलायम हो जाओ। एकरा अलावे 50 ग्राम खनिज मिश्रण आ 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला के ही दही। अगर बागवानी के लिए बनी, भिंडी लगौले बनी, तो भिंडी में माइट आ फल आ तना छेदक आ कद्दू वर्गीय फसल में फल मक्खी के प्रयोग के नियमित निगरानी करे के सलाह दिहल जा रहल बा। माइट के प्रयोग दिखाई देवे पर एथियान 1.5 से 2 मिलीलीटर पानी के छिड़काव करे के चाही। भिंडी में फल आ तना छेदक के प्रबंधन खातिर डाईमेथोएट 30 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के छिड़काव करे के चाही। कद्दू वर्गीय फसल में फल मक्खी के नियंत्रण खातिर डाईमेथोएट 30 EC प्रति 2 मिलीलीटर 10 ग्राम चीनी प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करे के चाहिए। फसल विशिष्ट सलाह जानल जाओ। लंबा अवधि वाला धान जैसे सबौर श्री, सबरणा, सब एक, राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा, BPT 5204 आ राजेंद्र कस्तूरी के नर्सरी लगावल जा सकेला। स्वस्थ पौधा खातिर नर्सरी में सड़ल गोबर के खाद के रूप में व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी के चौड़ाई 1.25 मीटर से 1.5 मीटर आ लंबाई सुविधा अनुसार रख सकीला। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई खातिर 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के नर्सरी तैयार करें। बीज के व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिरावे से पहले बीज उपचार जरूर कर लीं। एकरा अलावे अब हमनी का मौसम पूर्वानुमान जान लिहल जाओ। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 3 से 7 जून के दौरान जिला के अधिकांश भाग में मौसम शुष्क रहे के संभावना बा। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के अनुमान बा। प्रातःकालीन आ सायंकालीन सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 65% आ 20% के आसपास रहे के संभावना बा। अगला 2 दिन तक 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से पछुआ हवा चले के संभावना बा, जबकि

हैदराबाद पूर्वानुमान अवधि के शेष दिन में दक्षिण पूर्वी हवा चले के अनुमान बा। श्रोता भाई बहन, एक कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। आ अब घड़ी कहता कि कार्यक्रम के समय और आ गई, तो चलत चलत गांव घर कार्यक्रम सुने वाला सब श्रोता भाई बहन के दीनू भाई के तरफ से राम राम।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

रियल इंडियन फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सांझ गीत कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

दिसवा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं ये गीत।

बिहारी बाबू फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। ब्रजकिशोर दुबे के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हमारे अगले प्रसारण की कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिलाइए, शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। तो आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम रोहतास द्वारा आज आलमपुर पंचायत भवन में 181 के प्रचार प्रसार हेतु एक विशेष बैठक सह जागरूकता कार्यक्रम सखी वार्ता का आयोजन किया गया। इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों की समस्याओं का समाधान करना, विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं और जीविका दीदियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। कल दिनांक 4/6/2026 को बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के सदस्य सरदार कमलजीत सिंह ने रोहतास जिले के उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जिले में चल रही उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार सरकार उद्योग एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। राज्य में उद्योगों के विकास तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित भी की जा रही है, जिनका लाभ बड़ी संख्या में लोग प्राप्त कर रहे हैं। कल दिनांक 4/6/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा की गई। जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में कुल धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध 80% सीएमआर की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को की जा चुकी है। सभी प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया 15 जून 2026 तक 100% सीएमआर आपूर्ति करवाने हेतु अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी रोहतास को निर्देश दिया गया कि 15 जून 2026 के अनुरूप प्रतिदिन प्रखंडवार सीएमआर आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारण करेंगे। प्रखंड के वरीय नोडल पदाधिकारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इसका अनुश्रवण करेंगे। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम रोहतास के द्वारा सीएमआर संग्रहण हेतु अतिरिक्त गोदाम को अधिसूचित करने का प्रस्ताव दिया गया। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया गया कि विभागीय मानक के अनुरूप गोदाम चयन में संतुष्ट होने के उपरांत ही विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं ये गीत।

बेटा फिल्म के इस गाने के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासा

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है? पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
6: डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कहाँ चलती है, इधर तो
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभवाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा और जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही आवागमन की मिलेगी अनुमति। और मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 3 कर्मियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। एनडीए के घटक दलों भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भाजपा ने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। इधर जदयू ने पटना से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, मधुबनी से भारती मेहता और पश्चिम चंपारण से शिवरानी देवी प्रजापति को द्विवार्षिक चुनाव के तहत उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए शेखपुरा से ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव जबकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एनडीए ने आज 8 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। शेष 2 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा की ओर से आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी जिलों में मीडिया संवाद, प्रदर्शनी, योग शिविर और जन कल्याण शिविर का आयोजन होगा।
2: भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 जून से 21 जून तक पूरे देश एवं बिहार में 12 साल बेमिसाल विश्वास, विकास और जन कल्याण अभियान चलाया जाए। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाएं एवं विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।
0: भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी केवल एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही वन वे ट्रैफिक के तहत परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा।
3: 7 जून के करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे।
0: बक्सर के इटाढ़ी रेलवे कुमटी पर नवनिर्मित रोड ओवर ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरओबी का उद्घाटन कुछ दिन पहले हुआ था। आरओबी का पाया संख्या 5 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया है। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में 6 लोगों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल के 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया है। सीटीएसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि आईसीयू में तैनात चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार, एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के आवेदन पर ब्रह्मपुरा थाने में शिकायत दर्ज की गई है।
4: 4 जून 2026 को करीब 4 बजे सुबह में प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। अभी तक 3 लोगों को

0: गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वो जो तीन लोग हैं वो एक मेंटेनेंस हेड वहां के, एक एडमिन हेड, और वहां जो आईसीयू में जिन डॉक्टर की ड्यूटी थी उस समय वो वहां पे नहीं उपलब्ध थे, और उनकी इन तीन लोगों की उस समय इमीडिएट लापरवाही के वजह से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले दो वर्षों में 50 लाख घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आज पटना में पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ जल्द ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति में सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को भुगतान किया जाएगा।
2: अगले दो वर्षों में 50 लाख घरों पर हम सोलर युक्त बिजली पहुंचाए और 125 यूनिट जैसे पार कीजिएगा, 125 यूनिट से ज्यादा आपके घरों पर सोलर युक्त बिजली जब उत्पादन होगा आपके अकाउंट में हम पैसा आपको तुरंत वापस करना शुरू कर देंगे। ये कमाने का भी जरिया हमारे लोगों के लिए हो जाएगा।
1: प्रदेश में आज से शारदीय खरीफ महाअभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार खेत बचाओ अभियान चलाकर मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री ने अगले महीने से किसान जन कल्याण संवाद और किसान डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने गैर मजरुआ आम श्रेणी की सभी सरकारी जमीनों तथा जमाबंदी रद्दीकरण के मामलों को रोक सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोजपुर, मधेपुरा और अरवल जिलों के राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सरकारी भूमि की खरीद बिक्री रोकने के लिए इसकी सूची निबंधन विभाग को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
6: मैं मीनाक्षी मदन राय, जो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी।
1: न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए थे। न्यायमूर्ति राय इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी और राम कृपाल यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में।

0: कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने और प्रकृति के संरक्षण में सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: बदलते मौसम, बढ़ता तापमान, घटते जल स्रोत और प्रदूषण की समस्या आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे समय में पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता बन गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी पटना के जेपी गंगापथ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पौधारोपण कर 1,00,000 पेड़ लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने लोगों से अधिक पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने की अपील की।
3: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं जरूर आपको शुभकामना देता हूँ और आज तो एक अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं। इस इलाके में लगभग जितना की चिड़िया खाना में पेड़ नहीं है उससे अधिक सिर्फ इस जेपी गंगा पथ पर 1,00,000 पेड़ लगाने का अभियान आज हम लोग शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं।
2: गया में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि आज का दिन हमें पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का बोध कराता है।
4: आज का दिन हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराने का अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर का वातावरण नहीं है बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य, भविष्य का आधार है। उसके संरक्षण के बिना मानव सभ्यता का सतत विकास संभव नहीं है।
2: इधर जिला मुख्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न सरकारी संस्थानों में पौधारोपण किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत भी लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी कोलंबर पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा में पुलिस ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फरीदपुर गांव से पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में शराब के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कैमूर के प्रभारी मंत्री संजय सिंह की अध्यक्षता में आज भभुआ में संभावित बाढ़, सुखाड़ और भीषण गर्मी से निपटने को लेकर विभागवार की गई तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की गई। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत आज शिवहर और शेखपुरा जिले के अलग अलग गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में पाकिस्तान को 5-3 से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की इस जीत में गोलकीपर सावन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सावन कुमार पटना के आरके राय अकादमी में हॉकी का प्रशिक्षण लेते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा और जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को

नया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से राज्यव्यापी विकास विश्वास और जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही आवागमन की मिलेगी अनुमति। और मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 3 कर्मियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
1: शिवहर जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि आम राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं। 2 जून को जिले के 13 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 908 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 779 आवेदनों का निष्पादन मौके पर किया गया। तनियानी प्रखंड के बिलहिया तथा डुमरी कटसरी प्रखंड के नया गांव पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में राज्य के ग्रामीण विकास और सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। इस दौरान श्री कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुनी और उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शिविर में सांसद लवली आनंद, बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू तथा जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों को सुनना और संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
2: तो ये सहयोग कार्यक्रम यहाँ के लोगों के लिए, अब ऑफिस नहीं जाना पड़े, ब्लॉक नहीं जाना पड़े, तो जिला नहीं जाना पड़े, उनकी समस्या की यही सुनवाई करके यहाँ से होने वाला है तो यही पर निष्पादन, यहाँ से नहीं होने वाला है तो जिन अधिकारियों संबंधित है उनको आवेदन यहाँ से भेजा जाएगा और उनको
1: इधर जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने की। बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मंत्री ने लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत शिवहर जिले के पंचायतों में किसान जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को कृषि भूमि के संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने तथा बंजर होती जमीन को पुनः खेती योग्य बनाने के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी शिविरों में किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। भारत माला परियोजना चरण 2 के अंतर्गत प्रस्तावित सिल्लीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु शिवहर जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर गठित 5 सदस्यीय समिति ने अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के किस्म और प्रकृति निर्धारण करने के लिए मौजा मधुबनी उर्फ प्रदेशिया और ताजपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। यह निरीक्षण एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए प्राप्त खेसरा सूची के आधार पर भूमि की वास्तविक प्रकृति, उपयोग और वर्गीकरण के निर्धारण के उद्देश्य से किया गया। समिति ने संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण कर मौके पर ही जांच की। यह 5 सदस्यीय समिति 3 जून से 9 जून तक शिवहर जिले के 12 मौजा का दौरा करेगी। इस दौरान एक्सप्रेसवे के निर्धारित संरेखण के अनुरूप अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की प्रकृति और भौतिक सत्यापन तथा निर्धारण किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने जिले के विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास का उद्घाटन

0: किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लास के संचालन से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर सतत प्रयास किए जाएंगे। शिवहर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बीते दिनों व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सहमति के आधार पर 287 मुकदमों का निष्पादन किया गया तथा 48,27,000 रुपए की राजस्व वसूली हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार तथा जिलाधिकारी प्रतिभा रानी सहित अन्य अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायिक अधिकारी ललन कुमार रजक ने किया। लोक अदालत में सुनवाई के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11,000 से अधिक मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजे गए थे। इसमें से सुनवाई के बाद आपसी समझौते के आधार पर 287 मामलों का निष्पादन किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।

एफएमएंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ई मन पसंद।

और दोस्तों अब हम उनका भी परिचय दे दें जिनकी पसंद है ये गीत। फुटानी चौक नरहन एस्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित।

इसी गीत को हमारे ये श्रोता भी सुनना चाहते हैं। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और

ताराना फिल्म के इस गाने को सुनना चाहते हैं। मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाहणकर, राही श्रीमती सरिता ग्वाहणकर, प्रणीता सिद्धांत ग्वाहणकर, अर्जुन ग्वाहणकर, टुक टुक

दिल की बात दिल में छुपाए बैठे हैं, किसी की यादों को सजाए बैठे हैं, दुनिया समझे चाहे कुछ भी हमें, हम तो उनकी मोहब्बत में मुस्कुराए बैठे हैं।

दिल टूट जाए तो आवाज़ नहीं होती, हर किसी को मोहब्बत रास नहीं होती। ये तो अपना अपना नसीब है दोस्तों, कोई भूल जाता है और किसी से भुलाए नहीं भूलती।

अनुरोध फिल्म के इस गाने को सुनना चाहते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा।

अब आइए हम आपको सुनवाते हैं पद्मावत फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल में सौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और कलेर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन।

अब आइए अंदाज फिल्म का एक गीत सुना जाए, पसंद आप सबों की है। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़ और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंघले और आरती जोंघले।

इस गीत को सुनना चाहते हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती राजेश, माफ़ कीजिएगा, श्रीमती शीतल राजेश।

अंदाज फिल्म के इस गाने को हमारे ये श्रोता भी सुनना चाहते हैं। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, ललिता लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा,

शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी।

आने से उसके आए बहार, महक उठा मेरा हर एक द्वार, उसकी हंसी से रोशन हुई जिंदगी, जैसे चांदनी से सज गया हो संसार।

जिन्हें गिरा फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू

और दोस्तों आइए अब हम चलते हैं दिनारा, यानी दिनारा से हमारे श्रोता हैं जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मुनि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। आप सबों की पसंद है साजन बिन सुहागन फिल्म का ये गीत।

इस गीत को सुनना चाहते हैं, मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर।

जीवन की राहों में ठोकरें भी जरूरी हैं, तभी तो सफलता की ऊंचाइयां पूरी हैं। हार कर बैठ जाना मंजूर नहीं हमें, क्योंकि सपनों की उड़ान अभी अधूरी है।

मेरे हम सफ़र, इस फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। पसंद आप सबों की है। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर और पता नहीं कितने और बन बघेरा राजनांद गांव से योगेश सारवा और आशा सारवा।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य।

दिल एक मंदिर, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। पसंद आप सबों की है। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विन और विपुल कांबड़े।

अब आइए सुना जाए आंखें फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। फरमाइश करता है हमारे ये श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

गढ़नोखा लालगंज रोहता से राजकिशोर सिंह बड़क सिंह, ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोतीलाल गुप्ता बीरा सिंह और लाल बिहारी सिंह,

इसी के साथ ई मन पसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून

0: अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को

0: करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों,

0: हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा

को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्य

0: एम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं शिव भजन से।

अभी आप सुन रहे थे प्रेमा रंजन सिंह को, और अब आइए सुनवा रहे हैं विंध्यवासिनी देवी की आवाज़ में ये भोजपुरी गीत।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

इसी के साथ भोजपुरी लोक गीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बंदगी।

यह हमद अभी आप सुन रहे थे जानी बाबू की आवाज़ में। अब जरीना बानो की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये नात।

इसी नाद के साथ बंदगी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुआ चाहते हैं हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से, रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: विक्रम, शब्द शिल्प स्वर सहयोग सुप्रभात राय और प्रस्तुतकर्ता अतुल कुमार, प्रदर्शन आकाशवाणी भागलपुर।
1: श्रोता मित्रों नमस्कार, उपस्थित हैं हम शब्द शिल्प के इस अंग के साथ। श्रोताओं, वैसे तो साहित्य से शायद ही कोई विषय अनछुआ हो, हर विषय और मौसम पे साहित्यिक रचनाएं मिलती है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु और साहित्य का गहरा और परस्पर संबंध रहा है। भारतीय साहित्य में जहां एक ओर गर्मी की प्रचंडता, तपन और लू का चित्रण मानवीय संघर्ष और प्रकृति की कठोरता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ये प्रेम, उल्लास और फलों के राजा आम के मौसम के रूप में भी उभरती है। कुछ साहित्यकारों ने दोपहर को एकांत और आत्ममंथन के प्रतीक के रूप में देखा है, तो कहीं गर्म हवा को

0: साहित्य में तपस्या और जीवन की कठोर परीक्षा के रूप में दर्शाया गया है। पश्चिमी साहित्य में ग्रीष्म ऋतु को अक्सर युवावस्था, स्वतंत्रता और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आइए सुनते हैं एक वार्ता, ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक चित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर इति कुमारी।
1: भारत ऋतुओं का देश है। यहाँ प्रकृति समय समय पर अपने विविध रूपों से मानव जीवन को प्रभावित करती रही है। भारतीय संस्कृति और साहित्य में ऋतुओं का विशेष स्थान है, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति का संबंध अत्यंत घनिष्ठ माना गया है। इन ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु का अपना विशिष्ट महत्व है। सामान्यतः ग्रीष्म को केवल तपन, लू और कठिनाई का प्रतीक समझा जाता है, परंतु साहित्यिक दृष्टि से यह ऋतु केवल गर्मी का अनुभव नहीं कराती, बल्कि जीवन के संघर्ष, तपस्या, प्रतीक्षा, प्रेम, विरह और प्रकृति के सौंदर्य को भी अभिव्यक्त करती है। भारतीय साहित्य की प्राचीन परंपरा में ऋतु वर्णन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति ऋतु संहार में ग्रीष्म ऋतु का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। उन्होंने सूर्य की प्रखर किरणों, सूखी धरती, तप्त वायु तथा जल के महत्व को बड़ी कलात्मकता से प्रस्तुत किया है। कालिदास के अनुसार ग्रीष्म केवल कष्टदायक नहीं, बल्कि मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने वाली ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति का कठोर रूप दिखाई देता है, किंतु यह कठोरता आने वाले मनमोहक वर्षा में फैलता हुआ मोर पंख एवं हरियाली को भी दर्शाता है। इस मौसम को विरह और तड़प का प्रतीक माना गया है। दोपहर की सूनी राहें, गर्म हवाएं, लू और सूखते हुए जल स्रोत प्रेमी प्रेमिकाओं के मन की व्याकुलता और विरह की अगन को दर्शाते हैं। रीतिकाल के कवि बिहारी ने ग्रीष्म की दोपहरी का वर्णन करते हुए लिखा है, देखी दोपहरी जेठ की छाहे चाहती छा, अर्थात जेठ के महीने की दोपहर इतनी भयंकर है कि छाया भी अपने लिए छाया ढूंढने लगती है, वो भी डरकर जंगलों या घरों के भीतर छिप गई है। ग्रीष्म को केवल विनाश या कष्ट का प्रतीक नहीं माना गया है, बल्कि इसे सृजन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। जब तक ग्रीष्म की तपन चरम पर नहीं होगी, तब तक समुद्र का जल वाष्प बनकर बादलों का रूप नहीं लेगा। इसलिए ग्रीष्म की तपस्या ही वर्षा ऋतु के सुखद आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मौसम वर्षा ऋतु के आनंद की भूमिका भी तैयार करती है। हिंदी साहित्य में भी ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख अनेक रूपों में मिलता है। भक्ति काल के कवियों ने इसे आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। कबीर ने संसार की तपन और आत्मा की प्यास को ग्रीष्म की गर्मी से जोड़ा है। वहीं सूरदास और तुलसीदास ने प्रकृति के माध्यम से मानव भावनाओं को व्यक्त किया है। रीति काल के कवियों ने ग्रीष्म ऋतु में विरहिणी नायिकाओं की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। तपती धरती और सूखे वातावरण के बीच प्रेम वियोग की भावना और भी गहरी हो जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी ग्रीष्म ऋतु अनेक सामाजिक और मानवीय संदर्भों के साथ सामने आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लोक जीवन और सादगी का चित्रण बहुत ही सटीकता के साथ किया है। हिंदी साहित्य के छायावादी और प्रगतिवादी के स्तंभ कहे जाने वाले कवियों ने ग्रीष्म ऋतु के बहाने ग्रामीण जीवन और मजदूरों के संघर्ष को रेखांकित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर में इलाहाबाद की पथ पर दोपहर की कड़कती धूप में काम करती महिलाओं का वर्णन ग्रीष्म की क्रूर यथार्थ को दिखाता है। सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने ग्रीष्म के माध्यम से जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। निराला की कविताओं में ग्रीष्म की कठोरता के बीच श्रमिक जीवन की पीड़ा दिखाई देती है। खेतों में काम करते किसान, धूप में तपते मजदूर और सूखी धरती की करुणा साहित्य को यथार्थ से जोड़ती है। इस प्रकार ग्रीष्म केवल प्राकृतिक शत्रु न रहकर

0: सामाजिक यथार्थ का प्रतीक बन जाती है। भारतीय लोक साहित्य में ग्रीष्म ऋतु का विशेष महत्व है। गांव में पके हुए आम की मिठास, कोयल की कूक, कुओं और तालाबों का जीवन तथा पेड़ों की छाया से जुड़ी अनेक लोक कथाएं और लोकगीत प्रचलित हैं। उत्तर भारत के लोकगीतों में गर्मी के दिनों में मायके जाने की इच्छा व्यक्त करती स्त्रियों की भावनाएं मिलती हैं। आम, तरबूज, खरबूजा और बेल जैसे फलों का वर्णन लोक जीवन को आनंदमय बनाता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु भारतीय जनजीवन और लोक संस्कृति की आत्मा से जुड़ी हुई है। ग्रीष्म ऋतु भारतीय दर्शन और आध्यात्म में भी तपस्या का प्रतीक मानी गई है। ऋषि मुनि कठिन गर्मी में तप करके आत्मबल को प्राप्त करते हैं। साहित्य में यह तपस्या आत्मसंयम और साधना का रूप लेती है। ग्रीष्म की जलती धूप मनुष्य को यह संदेश देती है कि कठिनाइयों के बाद ही जीवन में शीतलता और सुख प्राप्त होता है। इसलिए साहित्यकारों ने ग्रीष्म को संघर्ष और आशा के प्रतीक के रूप में देखा है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी ग्रीष्म ऋतु अत्यंत प्रभावशाली है। इस ऋतु में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, नदियां सिकुड़ जाती हैं और धरती तपने लगती हैं। किंतु इनके आगमन से पहले पलाश के लाल फूल, अमलतास की सुनहरी छटा और आम्र मंजरी प्रकृति को अनोखा सौंदर्य प्रदान करती है। कवियों ने इन दृश्यों को अपनी रचनाओं में बड़ी सुंदरता से चित्रित किया है। कोयल की मधुर आवाज और आम के पेड़ों की हरियाली ग्रीष्म की कठोरता के बीच सौंदर्य और मधुरता का अनुभव कराती है। ग्रीष्म ऋतु का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पक्ष विरह और प्रतीक्षा का भी है। भारतीय काव्य परंपरा में विरहनी नायिका की व्यथा को ग्रीष्म के माध्यम से अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तपती हवाएं, सूनी राहें और सूखे वृक्ष मानो उसके मन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ग्रीष्म केवल बाहरी ताप नहीं बल्कि हृदय की संवेदनाओं का भी प्रतीक बन जाती है। आज के समय में ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट ने प्रकृति के संतुलन को प्रभावित किया है। आधुनिक साहित्यकार ग्रीष्म की बढ़ती तीव्रता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। सूखती नदियां, घटते जल स्रोत और बढ़ती गर्मी मानव जीवन के लिए चुनौती बनती जा रही है। साहित्य इन समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। कहा जाता है कि भारतीय साहित्य में ग्रीष्म ऋतु केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन के अनेक अनुभवों और भावनाओं का प्रतीक है। यह संघर्ष, तपस्या, प्रेम, विरह, सौंदर्य और आशा का संदेश देती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य से लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य तक ग्रीष्म ऋतु ने कवियों और लेखकों को गहन प्रेरणा प्रदान की है। भारतीय साहित्य में ग्रीष्म का चित्रण यह सिद्ध करता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। सूरज की किरणों में जीवन का संदेश छिपा है, संघर्ष की गर्मी में ही सफलता का रास्ता बना है, तपती राहों में भी मंजिल मिल जाती है, ग्रीष्म की हर शाम सुकून दे जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक दृष्टिकोण से चित्रण एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जो सभी मौसम में इसे विशिष्ट संज्ञा देती है।
1: श्रोताओं, ग्रीष्म को केवल विनाश या कष्ट का प्रतीक नहीं माना गया बल्कि इसे सृजन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। अभी हम डॉक्टर इति कुमारी से वार्ता ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक चित्रण सुन रहे थे। शब्द शिल्प के इस अंक में अब आइए सुनते हैं एक कहानी। गर्मी जून में नहीं जुनून में है। रचनाकार हैं धीरेंद्र छथरवाला।
2: गर्मी न जून में है न ऊन में है, गर्मी जुनून में है। अगर मनुष्य चाहे तो वीरान वन में भी हरी क्रांति ला सकता है और मन चाहे मंजिल भी पा सकता है। मनोहर एक पढ़ा लिखा इंसान था, सिर्फ वक्त का मारा था। विलक्षण प्रतिभा, तीक्ष्ण मानसिकता और अदम साहसी भी था। असंग प्रतियोगिता में वह प्रथम आता था, मगर उसके पास न मोटी रकम और न ऊंची

पैरवी, यही कारण था कि वह मंजिल नहीं पा सका। बचपन में ही विवाह हो जाने के वजह से पारिवारिक समस्या भी उसके सामने सुरसा की तरह मुंबाए हुए था। अंततः वह हार नहीं मानने वाला था। बाध्य होकर वह किसी तरह एक रिक्शा का इंतजाम किया और वह रिक्शा चलाने का फैसला लिया। इसी बीच मनोहर दो बेटे का पिता भी बन चुका था। उसकी पढ़ाई लिखाई, खान पान की व्यवस्था हर वक्त मनोहर के मानस पटल यानी उसके दिमाग में दौड़ता रहता था। उसके मन में यह था कि मैं तो पढ़ लिखकर रिक्शा चलाने लगा, मगर अपने बेटे को मैं पढ़ा लिखा कर IAS बनाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे खून भी बेचना पड़ेगा या किडनी, मैं तैयार हूँ। इसी संकल्प के साथ मनोहर अपने आप को मशीन बना दिया था। भयंकर शीत, झुलसा देने वाला ग्रीष्म, काम सखा वसंत और तीक्ष्ण स्वरों वाली वर्षा का परवाह किए बगैर वह रात दिन रिक्शा चलाता रहता था। एक दिन मनोहर का दोस्त अचानक देखा कि मनोहर रिक्शा पर सवारी बैठा कर जा रहा था। वह निर्निमेष मनोहर को देखता रहा तब तक जब तक मनोहर उसके आँख से ओझल न हुआ और वह सोचने लगा कि पढ़ाई लिखाई में मनोहर विलक्षण था। हर वर्ष अपने वर्ग में वह प्रथम आता था, मगर आज वह रिक्शा क्यों चला रहा है? जरूर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं। अब मैं मनोहर से बिना मिले नहीं जाऊँगा। वह वहीं मनोहर के आने का इंतजार करने लगा। लगभग 2 घंटे के बाद मनोहर उस कड़ी धूप में पसीने से तरबतर होकर आया और एक गाछ की छांव में रिक्शा को खड़ा कर पसीना पूछने लगा। इसी बीच वह दोस्त शेखर जो इंतजार कर रहा था, वह धीरे धीरे मनोहर के करीब आया। मनोहर शेखर को देखकर दंग रह गया कि अरे शेखर, कहाँ से, क्या कर रहे हो, बाल बच्चा कैसे हैं? दोनों दोस्त विगत 10 वर्षों के बाद मिला था। इतना सुनते ही शेखर मनोहर के गले से लिपट गया और रोने लगा। शेखर के कंधों पर मनोहर के आँखों से निकला वह गर्म आंसू शेखर के कंधों को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच शेखर पूछ बैठा कि मनोहर, वह जो तुम्हारा बेटा नमन था, वह कितना बड़ा हुआ और वह किस क्लास में पढ़ रहा है? मनोहर ने कहा, देखो शेखर, वह बहुत तेज है पढ़ने में। वह वर्ग 4 से लेकर मैट्रिक तक वह हमेशा प्रथम रहा, यहाँ तक कि वह मैट्रिक की परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप आया। क्या करें यार, उसकी बलवती इच्छा है कि मैं दिल्ली में पढ़ूँगा। अब उसका नाम दिल्ली में लिखवाना ही पड़ेगा और लिखवा ही दूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। वाह भाई मनोहर, तुमको इस भीषण गर्मी का पता है कि अभी यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी तुम रिक्शा चला रहे हो? सुनो शेखर, गर्मी ना ऊन में है, ना गर्मी जून में है, गर्मी जुनून में है। मेरा तो संकल्प है कि जब मेरा बेटा नमन BA में भी अपने कॉलेज में फर्स्ट यानी प्रथम आया, उसकी बलवती इच्छा है कि मैं UPSC की पढ़ाई करूँगा। उसकी पढ़ाई के लिए तो यह 45 डिग्री धूप क्या है, 100 भी हो तो मनोहर का रिक्शा न रुका है न रुकेगा, तब तक जब तक मेरा बेटा नमन IAS नहीं बन जाता है, तब तक मेरा यह क्रम चलता ही रहेगा। इतना सुनते ही शेखर बोल बैठा कि नमन दिल्ली में कहाँ रहता है, बताओ, मैं उसे समय समय पर मिलूंगा। एक दिन अचानक सड़क के किनारे खड़ा एक लड़का को देखा। उसका चेहरा साफ साफ मनोहर का दूसरा चेहरा दिखा। बिना सोचे समझे बोल पड़ा, तुम नमन हो? जी हाँ, मैं नमन हूँ और मनोहर बाबू का बड़ा बेटा हूँ। सर, आपकी तारीफ क्या है, यानी आपका परिचय? तो आज से पहले कहीं आपको देखा भी नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम और मनोहर दोनों एक साथ पढ़ता था। मेहनत से पढ़ो,
अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यह मेरा मोबाइल नंबर है, कॉल करना, तुम्हारे साथ हमेशा मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा तो नमन नमस्ते कहकर विदा किया और चलते बना। एक दिन शेखर अपने मित्र के घर उसकी बेटी की विवाह में शरीक होने के लिए जाता है। अचानक वहाँ मनोहर से मिलता है। मनोहर को भी उस विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण था। दोनों मित्र में बातचीत के क्रम में मनोहर शेखर को कहता है कि तुम कभी कचहरी कोर्ट गए हो? वहाँ एक एक झोपड़ी में इस भयंकर धूप में वकील साहब बैठे रहते हैं और उनकी नज़र बाहर आने वाले क्लाइंट पर है। धूप की चिंता नहीं, क्योंकि इतने पैसे पास नहीं हैं कि माँ की दवाई लेना है, घर के लिए साग सब्जी लेना है। बच्चे कोर्ट आते वक्त तरबूजा और समोसा लाने को कहा।

0: वकील साहब बैठे रहते हैं और उनकी नज़र बाहर आने वाले क्लाइंट पर है। धूप की चिंता नहीं, क्योंकि इतने पैसे पास नहीं हैं कि माँ की दवाई लेना है, घर के लिए साग सब्जी लेना है। बच्चे कोर्ट आते वक्त तरबूजा और समोसा लाने को कहा, वह कैसे होगा? इससे तो मैं ठीक हूँ, जो इस भयंकर ग्रीष्म की परवाह किए बिना पढ़ाई से लेकर घर खर्च भी चला देता हूँ, इंतजार नहीं करता। एक दिन एक बीमार व्यक्ति को रिक्शा पर बैठाकर मनोहर अस्पताल लेकर जाता है। देखा कि कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहा था कि इसी शहर का एक लड़का नमन नाम का है, जो IAS की परीक्षा में ऑल इंडिया में दूसरा स्थान लाया है, इस शहर का मान बढ़ाया है, इस शहर का नाम रोशन किया है। इतना में एक आदमी बोला, वह जो रिक्शा वाला खड़ा होकर पसीना पोंछ रहा है, नमन उसी का बेटा है। वहाँ खड़े लोगों ने मनोहर को नमस्ते करते हुए बोला, नमन आपका बेटा है? जी हाँ, क्या बात है, कृपया बताएं कि आपका लड़का क्या कर रहा है? आपका नाम मनोहर रिक्शा वाला है? आप मिठाई खाएं, क्योंकि आपका बेटा जो है ऑल इंडिया में IAS के में दूसरा स्थान लाकर इस शहर का नाम रोशन किया है, आपको प्रणाम। अब मनोहर का खुशी का ठिकाना न रहा, वह फूले न समा रहा था। वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, चलो सामने मंदिर में प्रणाम करने। क्या बात है? अरे नमन, IAS की परीक्षा में दूसरा स्थान पूरे इंडिया में लाया है, वह तो अब जिला अधिकारी बन गया और हम सबका दुख दूर हो गया। इतने में नमन घर आता है, आते ही पिता से लिपट कर रोने लगता है। पिता सीने से लगाता है और नमन को बधाई देने वालों का तांता लगा रहता है। इस प्रकार मनोहर ने यह सिद्ध करके समाज को, दोस्त को, सगे संबंधी को बता दिया कि गर्मी न ऊन में है न जून में है, गर्मी जुनून में है।
1: कुछ रचनाएं किसी विचार या किसी अनूठे क्षण की उपज भर नहीं होती, बल्कि जीवन की जिज्ञासाएं, अनुभव और अवलोकन जब एक लय में गूंजने लगता है, तब वे अपना स्वरूप धारण करती है। अभी हम धीरेन्द्र छथरवाला से कहानी गर्मी जून में नहीं जुनून में है सुन रहे थे। शब्द शिल्प में अब आइए चलते हैं आखिरी सोपान यानी काव्य पाठ की तरफ। इसमें आज हम सुनेंगे अभय कुमार पाठक से काव्य पाठ।
2: ओह, यह कैसा समय आ गया, पानी न जाने अब कहाँ खो गया। लोग पानी के लिए खून बहा रहे हैं, पानी के लिए अब खूंसे नहा रहे हैं। यह तो अभी आगाज है, अंजाम तो और भी बुरा होगा। नागासाकी हिरोशिमा जैसा कई देश अभी और जलेगा। तृतीय विश्व युद्ध का कारण कुछ और नहीं पानी होगा। जहाँ इतिहास नए युग को दोहराएगा, यही कहानी होगा। समय रहते हम संभल जाएं तो अच्छा होगा। हमारी गलतियों से परेशान सदियों का बच्चा होगा। पानी हर शय की ज़रूरत है जीने के लिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी जमी पीने के लिए। कहीं एक बूंद के लिए लड़ाई हो रहा है, सैकड़ों लीटर से कहीं कोई गाड़ी धो रहा है। पहाड़ मिट रहा है, जंगल कट रहा है, पक्कीकरण की होड़ में जमीन घट रहा है। पैसों की खातिर तालाब भर रहा है, अपनी बर्बादी खुद इंसान कर रहा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू खो गई, खेत को बिकते देख मेरी आंखें रो गई। पानी के लिए हर तरफ कोहराम मच रहा है, खेत और तालाब को मिटाकर शहर बस रहा है, खेत और तालाब को मिटाकर शहर बस रहा है। आ जाओ मेघों के राजा, आ जाओ मेघों के राजा, देखो धरती तरस रहा है। दुनिया यह बेहाल बनी, अब धूप से अंगारे बरस रहा है। पानी को मोहताज यहाँ सब, जाने क्या कब हो

जाएगा। पानी को मोहताज यहाँ सब, जाने क्या कब हो जाएगा। बूंद बूंद तेरा जल अमृत, क्या यूं ही अब खो जाएगा। नदी पोखरे सूख गए सब, कुआं भी अब खाली है। पौधा को देख आंसू आया, लाचार पड़ा अब माली है। हम मानव कुछ हल कर लेते, पशु पक्षी सब तड़प रहा है। खेत हमारा कितना प्यासा, पग पग पर यह दरक रहा है। जल्दी से हरियाली कर दो, जल्दी से हरियाली कर दो, इतनी जल्दी तुम आ जाओ। झूम झूम कर सब नाचेंगे, आओ बादल जल बरसाओ। झूम झूम कर सब नाचेंगे, आओ बादल जल बरसाओ। माँ, माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। बिना बोले ही जान जाए, माँ वो मित्र है। माँ की डांट आरती है, माँ का चांटा जीवन का सारथी है। माँ करुणा में सागर है, माँ रोशनी में दिवाकर है। माँ का हर शब्द मोती है, माँ का हर शब्द मोती है। माँ अमावस रात की ज्योति है, माँ बिंदु है, माँ ब्रह्मांड है। माँ सुबह की लालिमा, माँ सुकून की सांझ है। माँ खुशबू है, माँ इत्र है। माँ खुशबू है, माँ इत्र है। माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। खाक होने से अच्छा है अंगदान करें, खाक होने से अच्छा है अंगदान करें। जिंदगी को जीने का सम्मान करें। नित्य नित्य नया शोध हो अंग जोड़ने के लिए, सिमटती हुई सांसों में जहाँ घोलने के लिए। नित्य नया शोध हो अंग जोड़ने के लिए, सिमटती हुई सांसों में जहाँ घोलने के लिए। जो हर किसी के ख्वाब को पूरा कर सके, मायूसी भरी जिंदगी में खुशियाँ भर सके। कटे हुए हाथों को हाथ मिल जाए, बेपैर किसी के पैरों से चल पाए। गूंगे का हर शब्द मेरी आवाज़ हो, बहरे के कानों में सुरों का साज हो। मेरा दिल किसी की धड़कन बन जाए, गुर्दा किसी के तन का तजन बन जाए। कोई मेरी आँखों से दुनिया का रंग देख ले, मरने के बाद जो दान करना है वो अंग देख ले। देहदान की ज़रूरत लोगों को बताएंगे, खुशी से इस पंक्ति में हम खड़े हो जाएंगे। रक्तदान की भावना भी जन जन में जगाएं, छोटी सी इस पहल से किसी की जान बचाएं। छोटी सी इस पहल से किसी की जान बचाएं।

श्रोताओं, कुछ रचनाएं भावों और कल्पनाओं को सुंदर और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करती है। ये मनुष्य के हृदय को आनंदित करने के साथ साथ उसे संवेदनशीलता, नैतिक मूल्यों और जीवन के गहरे सत्यों से जोड़ती है। अभी हम अभय कुमार पाठक से काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोता मित्रों, साहित्य मानव जीवन को दिशा, संस्कार और चेतना प्रदान करता है। ये न केवल ज्ञान का संचित भंडार है, बल्कि हमारी भाषा, संस्कृति और विचारों को संरक्षित रखकर हमें एक बेहतर इंसान और समाज का निर्माण करने में मदद करता है। श्रोता मित्रों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने का। आज के शब्द शिल्प के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर सहयोग था सुप्रभात राय का। प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केन निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अफसाना एल्बम का ये गीत। और अब आइए हम आपको सुनवाएं ऐरा गैरा नथु खैरा एल्बम का एक गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

रसरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खां को। इसी के साथ रसरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

0: कभी कभी।
1: आंखें फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में साहिर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी रवि ने। दोस्तों अब आइए हम आपको सुनवाएं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का एक गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए हम आपको सुनवाएं दिल फिल्म का ये हिट नगमा।

दिल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। और अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं दिल आशना है फिल्म का ये गीत।

इसी के साथ हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल सुबह हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे 5:53 पर। नमस्ते रोहतास कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे सुबह 7:30 पर। समाचार प्रभात का प्रसारण समय होगा सुबह 8:00, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पसंद आपकी आप सुनेंगे सुबह 8:20 पर। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका की प्रस्तुति होगी सुबह 9:10 पर। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9:30 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कल सुबह 10:00। कल पूर्वाह्न 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। लोक माधुरी भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे पूर्वाह्न 10:30 पर। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार। पूर्वाह्न 11:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। वापिस है स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम युवाणी की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। शाम 6:00 सुनिए भोजपुरी लोकगीत। भोजपुरी बुलेटिन समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से शाम 6:05 पर। कार्यक्रम किसान वाणी इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत आप सुनेंगे शाम 6:40 पर। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास की प्रस्तुति होगी शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र। समय हो

हुआ शाम 7:25। वो आप इस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हम प्रस्तुत करेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद शाम 7:50 पर। समाचार संध्या हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप सुनेंगे 9:00। 9:15 पर सुनिए गज़ल का प्रोग्राम महफिल। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हम प्रस्तुत करेंगे 10:00 हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रस रंग। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने की प्रस्तुति होगी 10:30 पर। और रोज़ की तरह कल भी 11:00 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से रिले किए जाएंगे।

यदि संक्षिप्त जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26

जिसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।